लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है। हमसे बेहतर है ये पाजेब जो इस पांव में है। रख ले कल के लिए ये दूसरी पाजेब दिल, कल इसी बज्म में फिर आने को जी चाहता है।

इस रेशमी पाजेब की झनकार की सदके लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश किया गया और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है, शाम के वक्त है और आप भी हैं और मैं भी हूँ।

लता जी और माइति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म छाया में से निकाले हैं। निगत एन एस एस का ये फिल्म है और सलील चौधरी के साथ पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, इस तरह से आ रहा है।

खाई रे हमने कसम हंस परदेसी। लता जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो एक गीत और हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन समय नहीं मिला कि ये गीत कौन सा है। हाँ ये तो पता है कि फिल्म बाबू का है, निकिता फैफन तख्त का है और आशा जी और किशोर कुमार जी ने गाए हैं और देखते हैं राजेश रोशन के साथ, ये सब पता है लेकिन गाना चलो मैं भी सुनता हूँ, उम्मीद है आप भी सुनोगे।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं। फिल्म में है राही बदल गई है, इसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश की और आप उम्मीद है सुने होंगे और अवश्य अच्छा लगा होगा। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और मैथिली मुकेश, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, और देखते हैं किशोर कुमार जी साथ हैं।

मोहलत कितने लोगों से पहले मरते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ाना सबसे बड़ा सवाब है। कौन है सच्चा

दो जासूस करें महसूस, रफ़ी साहब और माइती मुकेश मिल के ये गीत गाए हैं। आपको पता है रफ़ी साहब मुकेश जी बहुत गाने नहीं गाए हैं, कुल मिलाकर जहाँ तक जोड़ा गया है, मिले हैं लोग को, मुझे भी मिला है, तो द्रियंत तक गाने हैं, उसमें से ये एक था। टोटल मिलकर यानी कुल मिलाकर द्रियंत तक गाने रफ़ी साहब और मुकेश जी साथ मिलकर गाए हैं, और उन द्रियंत में से यानी 23 में से ये एक था। दो जासूस करे महसूस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है, देखते हैं, हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, ये गीत लेकर।

माइट मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला मुकेश जी आपको सुनाइए मेरे प्यार में क्या वफा न थी। यहाँ क्या बात है, ये गीत सुनकर रफ़ी साहब ने कहा अगर प्यार की बात है, वफा की बात है और बेवफा की बात है तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं कि जवानी और दीवानी की बात कर रहा है। लीजिए रफ़ी साहब की आवाज़ में ये जवानी दीवानी की बात। जवान तुम हो जवान हम हैं,

शंकर जय किशन के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ जवान तुम हो जवान हम हैं, फिल्म दुनिया में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करते हैं, ये है, इसे चून अभी नहीं किए थे क्योंकि मुझे भी नहीं पता गीत कौन सा है। चलो मिलकर सुनते हैं, आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ।

ये कश्मीर है, ये कश्मीर है गीत के शब्दों से यही पता चलता है कि इसकी शूटिंग अवश्य हुई होगी कश्मीर में। बर्फीली यादों, बर्फीली पहाड़ों, गर्मी भी हो सकता है, पता नहीं। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाएं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे मैंने कहा, बर्फीली पहाड़।

कि हम आधा आधा लता जी और अपनी किशोर कुमार फिल्म आजाद में से निकाले हैं और हमने पेश की बस सिर्फ आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये रफ़ी साहब की, ये रफ़ी साहब का ये गीत है जिसमें लता जी भी साथ दी है और फिल्म है हंसते जख्म। इस तरह से

फिल्म हंस दिल जख्म में से निकाले हैं लता जी और रफी साहब की आवाज़ में ये पेश किया गया, बस आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं और वो ये है इस तरह से, ये दुएत है उन्हीं कौमी के साँच पर।

0: रफ़ी साहब आशा जी, ये हाँ दिल ने फिर याद का किया निकतिन सहन सस्ते खा, ये फिल्म सोनी कोमी के साज पर हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। क्या ख्याल है कर जमाया आपको ये सुनाऊं, वाह क्या बात है
1: सुंदर।

सुंदर भी लगती हूँ, अच्छी भी लगती हूँ, आ जा रे आ जा शर्म। आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, बहुत दिनों बाद शायद आप ये गीत सुनोगे, इस तरह से आ रहा है।

किसका रास्ता देखे, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की हो फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग इस तरह से।

0: चला जाऊंगा दो अश्क बहा लूं तो चलो, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, धमाकेदार गीत है। जी हाँ, चलो सुनते हैं क्या इसका नाम है, क्योंकि नाम बताने में झिझकता है।
1: सुनो, तुम्हारा असली नाम क्या है?
2: जी मेरा असली नाम जॉनी।
1: और नकली?
2: नकली भी जॉनी।
1: इसके अलावा भी कोई नाम है?
2: जी हाँ, जानी आपको ज्यादा पसंद है।

आवाज में साथ दे रहे थे हमारा मोहम्मद रफी जी। फिल्म का नाम आप ज़रूर जानना चाहोगे तो मैं यहाँ से ज़रूर से बताऊँगी, उसमें वादा नहीं है। फिल्म का नाम सहरा और फिल्म पिक्चराइज किया गया है नीलकंठ इंद्रियन से स्तक में मेरे दोस्त।

0: का गोला बात नहीं है डर की, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लियर।
1: फिल्म चोरी चोरी से ये थोड़ा सा अलग गीत आप सुन रहे हैं।

क्लासिक रोमांटिक गीत लता जी की आवाज में है ना, ये आपके वास्ते यहाँ से पेश किया जाता है, यहाँ से यानी कि फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से अपने रंग हजार फिल्म का नाम।

उफ, क्या बयान है। रफी जी ने हमको बता दी कि मैं तो अपने ही धुन में मगन में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। वेल, एक बेन हॉर्स्ट कब लाए दत्त।

0: Vin.
1: Geef het een nieuw leven op Vinted. Zo.
2: Persone walo nya se sarwan ki humne Kishore da ke gaye hue geet film ka naam Nautanki Boy aur aapse bata de Kishore da ji khud is film mein ye geet ko act ki hai aap usme dekhenge किशोर दाजी क्यों अगर चाहे तो देखना फिल्म का नाम नौटंकी बॉय इस बार हम सुनेंगे पैगाम बदला सारा जमाना
3: सुनो सुनो हे पंडित लोगों

0: गजब भयारे भाई हाय हाय हाय, चेला गुरु को चूना लगाए, जनता को ज्योतिषी उल्लू बनाए, और दूध वाला दूध में पानी मिलाए।
1: जिसको ना झाड़ू पकड़ना भी आए, वो बेटा अपना ही झंडा उड़ाए, आदमी भी कैसा बाजी है हाय, मौका मिले तो भगवान पेट खाए,
0: मौका मिले तो भगवान पेट खाए। कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या,
0: मंदिर में जूते।

महेंद्र कपूर जी की आवाज में श्रवण की है हमें। हाँ दोस्तों, भाइयों बहनों, आपको स्वागत है एक बार फिर

मत जाओ मेरे दोस्तों, इस गीत में कितने पेस्तर है ये ना, वो लड़का लड़की को कहते हैं कि आपके नाक मोटी है। हाँ, ऐसा गीत भी आपको सुनने को मिलता है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पर।

0: जी की कसम, दादा जी की कसम, काका जी की कसम, हमारे पदम जी की कसम,
1: सबके कसमें इसमें आप सुनते हैं कि दादा की कसम, मामा की कसम।
0: भर न चला।

मत मोरो भैया, मौत एक रोज आएगा। मोहब्बत में ऐसा ही होता है कि दिल जो दुखता है और जो हमारे सामने वाले जिसे आप चाहते हैं वो नहीं मानते ना, तो आपको ऐसा लगता है, पर नहीं, क्योंकि ऐसा मेरे है से धनकर दुश्मन लिफो। मत मरो, जिंदगी बहुत हसीन है, हसीन से जियो।

आइए बहार को हम बांट ले फिल्म तकदीर से, फिल्म तकदीर से ये सुंदर सा गीत आपके लिए निकाल दिया गया है और भी चला दिया गया है, आपके कानों तक पहुंचा दिया गया है।

ऐसा कहो जिसमें उपजे प्यार। आपके लिए फिल्म अल बेला से निकाल दिया गया है, यहाँ से हम श्रवण करेंगे फिल्म अल बेला से। मेरे प्यारे सुनने वालों की किस्मत की हवा कभी नरम तो कभी गरम, सब झेलते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको पता है रुकने का नाम मौत, चलने का नाम जिंदगी। बस कदम आगे ही बढ़ाते चलो, चलते चलो।

Yes, yes, yes, my dear. That's life. Hey, जीवन कभी नरम तो कभी गरम. जैसे खाना गरम रहता तो आप खा नहीं पाते, बल्कि थोड़ा से हल्के से गर्मी रहे उसमें तो जरूर से आप उसे ग्रहण कर सकते हैं. आपको, जी हाँ मेरे प्यारे सुने, आपने ठीक सुनते हैं कि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता. आपका दिन शुभ रहे, आपका पल शुभ रहे, आपका समय शुभ रहे. जी हाँ,

शमशाद बेगम जी की आवाज में हमने यहाँ से श्रवण की है सुनने कि दुनिया का मजा ले लो मेरे प्यारे सुनने वालों और आगे बढ़ो, जरूर से आगे बढ़ो। आपका दिन, आपका समय शुभ हो, मंगलमय होवे और आपका ये पल जो है आपको बहुत से शुभकामनाएं भी पेश किया जाता है। फिल्म नजराना से हम इस बार सुनेंगे।

लता जी और मुकेश जी ने श्रवण करा दी हमको। आपके पीछे कोई दीवाना है या दीवानी है? हाँ, क्योंकि मौसम है, दस्तूर है, तो शायद ऐसे हो सकता है ना। मैं तो नहीं कहती कि नहीं होना चाहिए, पर संभल संभल कर

कागज़ की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआओं की होती है, दौलत तो दुआओं की होती है जो न पानी से गलती है और न आग से जलती है। आनंद लूट ले, आनंद लूट ले ए मेरे बंदे, प्रभु के बंदगी का ना जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का।

0: फॉर मोर एंटरटेनमेंट।
1: अपने को क्या करना है, जो होता है वो होता ही, वो होके ही रहेगा। अपना समझते हो, अपना समझते हो तो रिश्ते निभाते रहना, अपना समझते हो तो रिश्ते निभाते नहीं रहना, मुझको याद करना और याद आते रहना। हमारी खुशी तो आप है मेरे प्यारे सुनने वालों, हमारी खुशी तो आप है, बस आप हमेशा हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहना।

0: और प्यार करे और प्यार करे, क्योंकि प्यार से ये सृष्टि रचाया गया है। महेंद्र कपूर जी के आवाज में किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ। किसी ने पूछा फूल से, पुष्प से, कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ। तो फूल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया।
1: Verteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer

फिल्म का नाम तेरे घर के सामने, रफी जी के आवाज में दिल का भंवर करे पुकार। अरे वाह, दिल में इतनी ताकत होवे है कि एक ऐसी इस शहर में रहता कोई उस ओर रहता है, फिर भी दिल को महसूस हो जाता है कि कभी किसी ने उनको याद करते हैं। जैसे कहानी कहावत भी है कि कुछ लोग किस्मत से नहीं, कुछ लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। कुछ लोग कीमत नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं, जैसे आप। जी हाँ, जैसे आप। सबने कहा कि अच्छे से जाना, सबने कहा कि अच्छे से जाना, पर एक माँ है, माँ ने कहा बेटा जल्दी आना।

आहा, इतनी जवां है जिंदगी, मोहम्मद रफी जी की आवाज में। फिल्म का नाम शहनाई, फिल्म का नाम शहनाई नेखती फिर सस्तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। इसमें रायश्री और विश्वाजीत एक्टर है और एक्ट्रेस है। यादों के भंवर में एक पल हमारा हो, यादों के भंवर में एक पल हमारा हो, खिलते चमन में गुल हमारा हो, खिलते चमन में एक गुल हमारा हो, जब याद करे आप अपनों को, जब याद करे आप अपनों को, तो उस याद में एक नाम हमारा हो।

मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

दोस्तों, आज भी हमें कुछ अच्छा करने का एक मौका मिलता है। जैसे एक अच्छी बात, थोड़ी मदद, थोड़ा सब्र, ये वो काम है मित्रों जो दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं। तो आज बाहर निकलें और किसी की मुस्कान की वजह बने मित्रों, किसी की मुस्कान की वजह बने। बेस्ट मैंसन ओक फंदा क्रैक वो वेरन कांस ओम इट्स खुद्स तो दून जो अस एन फ्रेंडलिक वर्ड एन बीच हेल्प एन बीच खुदूल दिट जैन द दादन दी द वेरल्ड मूयर माकन। बेस्ट मैंसन लातन वो एरोप उइटगान एन फंदाग de reden zijn voor iemands glimlach. Oh, de reden zijn voor iemands glimlach. Beste mensen, zal dat niet mooi zijn?

साथियों, अगर भगवान हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं तो वो हमारा विश्वास मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। मित्रों, अगर वो देर करते हैं तो वो हमारा सब्र, वो हमारा खदल बढ़ाते हैं, और अगर वो जवाब नहीं देते तो वो जानते हैं कि हम उसे संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं। मित्रों, als God ons gebed verhoort, beste mensen, versterkt hij ons geloof. Als hij het uitstelt, versterkt hij ons geduld. En als hij niet antwoordt, weet hij dat wij het aankunnen.

भाई बहनों, नदी जब किनारा छोड़ देती है, ध्यान करना, नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है, मित्रों तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में, बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में मित्रों, तो जिंदगी की रास्तों को मोड़ देती हैं, जीवन ही अलग हो जाती है मित्रों। इसलिए किसी के दिल को दुखाओ मत, ना ठीक बात है। बेस्ट मैंसन वनीर एन रिवीर बैतन जैन उफर स्त्री कान है जेल्फ द रोत्सन इन द रिवीर फॉर ब्रेजलन सेल्फ एन क्लेन क्वेस्टी कान अल्स देस ओन बहांद ब्लेफ्ट De loop van een leven veranderen. Daarom moet men niet kwaadwillig zijn. Blijf altijd lief. Blijf altijd aardig tegenover mensen. Dat is het beste wat je kan doen, lieve mensen.

भाई बहनों, दोस्तों, परमात्मा कहते हैं, भगवान बोलत है कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाए प्रार्थना करो, जब जिंदगी शानदार हो प्रार्थना करो, और जब जिंदगी में घबराहट हो तो प्रार्थना करो। भगवान बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा राह प्रदर्शक यानि गाइड एक हिस्स बनकर रहूंगा। ये भगवान बोलत है मित्रों, बेस्ट मैंसन खोत जेख अल्स हैट लेवन मुइलक वर्ड बेत अल्स हैट लेवन गवेल्दिग इस बेत अल्स हैट लेवन फरवारंद इस bid. En ik zal altijd je gids zijn. Dat zegt de Heer, beste mensen. Hoe mooi is dit niet, hè? Maar wij moeten wel vertrouwen in hebben.

साथियों, फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है। ध्यान कीजिए, सिर्फ हवा की दिशाएं में फैलती हैं, लेकिन एक इंसान की अच्छाई, आपकी अच्छाई या बुराई सभी दिशाओं में फैलती है मित्रों, सभी दिशाओं में। तो आप जानिए कि क्या कर्म कर रहे हैं, कौन सी कर्म कर रहे हैं मित्रों। द ह्योर फन ब्लूमन फर स्प्रेड जिख स्लेक्स इन द रिक्टिंग फन द विंड बेस्ट मैंसन इन द रिक्टिंग फन द विंड मार द खुद है फन एंड मैंस फर स्प्रेड जिख इन अल रिक्टिंग दिस वट डू यू खुद वट डू यू नीट खुद Dat noemen wij de karma, die verspreidt zich in alle richtingen, beste mensen. Ik shant man, sabhi chunautiyon ke khilaaf hamara antim hathiyar hai. Isiliye hamesha shant aur tanav mukt rahe, beste mensen. Een kalm geest is onze ultieme wapen tegen alle uitdagingen. Blijf dus altijd kalm en ontspannen. Vooral ontspannen. Dosto, un logon par shabdon ko barbaad na karein jo aapki chuppi ke layak hain. Kabhi kabhi सबसे शक्तिशाली बात कुछ भी ना कहना होता है। चुप रहो, लीफ मैंसन फर्स्पिल खेन वोर्दन अन मैंसन दी ऑफ स्टिल्त फर्दीनन सोम इस क्रखतस्त ओम हेलमाल निच्स निच्स हेलमाल निच्स सेख बेस्ट मैंसन। देंक हियर इज ओवर ना।

हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तो अपनी जेब में तीन शब्द रखें, तीन शब्द रखें, प्रयास, सत्य और भरोसा। प्रयास बेहतर भविष्य के लिए, सत्य आपके काम में, भरोसा ईश्वर में। मित्रों, सत्य आपके काम में और भरोसा ईश्वर में, फिर सफलता आपके चरणों में होगी। बेस्ट मैंसन अल्श यदाख बखिन हाउ दन द्री वोर्दन इन ये जाक प्रोबेर वार है एन फरत्रावन प्रोबेर फॉर बेटर टुकोमस्त वार है इन ये वैरक एन फरत्राव ऑफ ये खोत दन लिख सक्सेस ऑन योर फुटन बेस्ट मैंसन ऑन योर फुटन। साथियों, हंसना जरूरी है सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हमें खुश करती है, बल्कि इसके असल स्वास्थ्य खजौन थैत के लिए, मित्रों खजौन थैत के लिए भी है, क्योंकि यह आपके शरीर और आत्मा को ठीक करती है। हंसना, जरूर हंसना, और त्रैतर वाला हंसना नहीं, दिल खोल के प्रेम से हंसो मित्रों। लखन इस बलंगरैक बेस्ट मैंसन नित अलेन ओमदात हैत ओंस खुलिक माग मार ओग ओमदात हैत दात वैरकलक खजोंत हैत स्फोर देलन हेफ्त हैत खनीस्त लेखाम एन जिल हैत खनीस्त लेखाम एन जिल बेस्ट मैंसन ओंताओ वाते खजेगत हैत।

ओम गणपते नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति पप्पा मोरिया। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडा धीमहे तन्नो दंती प्रचोदयात। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, मेरे भाइयों, दोस्तों, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। कहते हैं कि रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और

ये शुभ सवेरा आप सभी को हार्दिक से बधाई है, हार्दिक से और हार्दिक से बधाई है। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे। करो दिन की शुरुआत मधुर वाणी के साथ, उम्मीद से भरी एक नई सुबह, एक नई सुबह में आपका स्वागत है। जो कुछ है तेरे दिल में, जो कुछ भी है तेरे दिल में, सब उसको खबर है। ए बंदे तेरे हाल पर, ए बंदे तेरे हाल पर भगवान की नजर है। उसके होते हुए तुम क्यों परेशान है? भगवान के चरणों में तो हर समय का और हर समस्या का समाधान है।

अचिरेणाधिगच्छत्। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन परायण को अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द

सभी प्रभु के प्रिय है, इसे आप मानो या ना मानो, बल्कि ये बात सच है। आज आप जो भी कार्य, आप जो भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, आप सभी को इस कार्य में सफलता प्राप्त होवे। हम यहाँ से भी याद करते हैं जो दुखित परिवार है, यही विनती है, प्रार्थना है प्रभु परमात्मा से, जो दुख के घड़ी है वह अवश्य से दूर हो जावे। कहते हैं कि भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। भगवान हमसे जो भी लेते हैं ना, उसे हमेशा हमको दुगना वापस करता है। तो इसमें आप सोचो, क्या अच्छा करते हो तो आपको दुगना भी अच्छा मिलेगा, और बुराई भी करोगे तो दुगना भी मिलेगा। भगवान हमसे जो भी लेता है उसे हमेशा दुगना वापस करता है। विनती है प्रभु से, हे भगवान मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, हे भगवान मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, जो रिश्ता सही हो, जो रिश्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना।

तो सही है, अभी जो मिला है पता नहीं कहाँ कैसे कब होगा। ये शरीर हमको मिलेगा या ना मिलेगा इससे तो आपको ना पता होगा, मेरे ख्याल से मुझे तो ना पता है। इसलिए जो भी करना है आज ही करो, अभी करो और अच्छा करो। कहते हैं कि कोई छुप कर पुण्य तो कोई पाप करता है, कोई छुप कर पुण्य तो कोई पाप करता है। हम इंसानों को ये चेतावनी है कि ऊपर हमारा भगवान बंद आंखों से हमें देख रहा है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहो, आत्मा को निरंतर साफ करते रहो, परमात्मा को निरंतर याद, जी हाँ, याद करते रहो।

अवश्य अवश्य आओ बैठो, कीर्तन में प्रभु से नाता अवश्य ही जुड़ जाएगा। श्री गणेश जी की कृपा आशीर्वाद सदा ही बना रहे आपकी और आपके परिवार पर। आप

इतनी सुंदर भजन की चल मन चल बाबा के धाम चल भोले की धाम। ईश्वर की उपस्थित हर जगह होती है, यानी कि कण कण में भगवान है, सिर्फ उसे देखने वाला उसे महसूस वाला होना चाहिए। कहते भी कि परवाह मत करो, परवाह ना करो, चाहे जमाना खिलाफ क्यों ना हो, बस उस रास्ते पर चलो जो साफ और अच्छा हो और सच्चा हो।

आपको आज की तारीख, आज का दिन हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है और आपको हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है और ये भी कहती हूँ कि आपका दिन मंगल

हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते कि भगवान के घर में धेरे अंधेर नहीं है, गीत में है भी और अवश्य इसमें सच ही होगा। शुभ दिन के हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए, वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआई की होती है, ना पानी से गलती है ना आग से जलती है। आनंद लूट ले बंदे, आनंद लूट ले बंदे, प्रभु के बंदगी का न जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। शुभ दिन का हार्दिक से शुभकामनाएं।

के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती नाथों का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहां पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी।

फिल्म मूवी बेताब से भी आप सुन रहे थे। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, जबकि रमजान का महीना है तो हम सभी रोज़ादारों को और जो ख़ास वजह से रोज़ा नहीं रख पाते हैं उन सभी को हम माहे रमज़ान मुबारकबादी अर्ज करते हैं। और ये सुंदर सा भजन हम पेश करते हैं आप सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए। श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी बनारस से आप सुनेंगे

श्री घोषाल जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे पूरब से जब सूरज निकले, फ्रॉम द मूवी बनारस से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा।

लता जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। कुछ मिले जुले गीत के साथ हम आप सभी की सेवा करने वाले हैं और मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं, जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है।

अभी आप सुन रहे थे, जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में श्रद्धा जी आपको सुनाने वाले थे। द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में आप सुनेंगे, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। फ्रॉम द मूवी सूरत और सीरत से आप सुनेंगे।

बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही न समाये तो क्या कीजिए। अभी आप सुन रहे थे दमायती मुकेश जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी सूरत और सीरत। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी इम्तिहान से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। अभी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज में फ्रॉम द मूवी इम्तिहान से हमने पेश किए हैं माझी नैया ढूंढे किनारा, उपहार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं द मैथी मुकेश जी की आवाज में।

0: उपहार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं माझी नैया ढूंढे किनारा। द माइती मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे। पिया बसंती रे काहे सताए आजा।
1: चाय गिरा दी। देखिए ना बाबू, देखिए ना, इसने सारी चाय गिरा दी मेरे ऊपर।
2: भाई गाड़ी ठीक हुई क्या?

अभी आप सुन रहे थे प्रिया यानी पिया बसंती रे काहे सताए आजा। कहना है आज तुमसे पहली बार प्रीता मजुमदार और बाबुल सुप्रियो आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे कहना है आज तुमसे पहली बार, बाबू सुप्रियो के साथ में प्रीता मजुमदार जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दिल विल प्यार व्यार। मैं चाहता हूँ तुझको दिल जान की तरह,

0: Ben jij op zoek naar...
1: दुपट्टा तेरा नौ रंग दा अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पार्टनर से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, आपको सुनाने वाले थे सोनू निगम के साथ में कुणाल गांजावाला और सुजी, और म्यूजिक देने वाले थे साजिद वाजिद। जीना सिर्फ मेरे लिए इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे दुपट्टा हाय दुपट्टा फ्रॉम द मूवी जीना सिर्फ मेरे लिए, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। और ज़रा सा हम देखें एक और दुपट्टा का सॉन्ग हो जाए, लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से।

अभी आप सुन रहे थे लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से, और फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगे। आपको सुनाने वाले थे अलका याग्निक उदित नारायण जी के साथ। बात होती है जब दुपट्टा का तो चुनरी क्यों ना हो जाए। अचानक छुले मेरी चुनरी सनम फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर 1 से हम पेश करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे आ जाना छुले मेरी चुनरी सनम, अभिजीत और अनुराधा श्री राम आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर वन से हमने पेश किए हैं सुनने वालों अखिया गुलाब। जी हाँ, गीत का बोल है अखिया गुलाब और फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं और ख़ास करके ये गीत को मांग किए हैं प्रकाश दामड़ी जी, तो प्रकाश दामड़ी जी के वास्ते ये सॉन्ग हम पेश करते हैं।
1: लाइन मार रही हूँ,
2: लाइन मार रही हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे अखिया गुलाब फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, और ये सॉन्ग हमने पेश किए हैं प्रकाश दमरी जी के वास्ते। शाडा इसरी जी भी ये प्रोग्राम को सुन रही है, तो शाडा आप ही के नाम हम पेश करते हैं ये सॉन्ग।
1: Brothers for life, Nick Carson, yo yo ho.

अभी आप सुन रहे थे दमादम मस्त कलंदर। सुनने वालों, जरा मैं आपको बताऊं कुछ बातें कि यहाँ पर बैठे बैठे मेरा गला सूख गया है आप सभी से बातें करते करते, तो क्यों ना कोका कोला हो जाए। जालिमा, एक कोका कोला पिला दो ना।

अरे साली माँ, कोला यानी कोका कोला ना सही तो पानी भी जरा सी पिला सकते हो आप। सजना वे सजना, ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते। और शाडा इसरी जी से हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वो कोई और गीत मांग किए थे और मैंने कोई और गीत चला दी। क्षमा करना यार। तो चलिए ये हो जाए आपका सॉन्ग।

अभी आप सुन रहे थे सजना वे सजना, और ये सॉन्ग हमने चलाए हैं शारदा इसरी जी के वास्ते। अभी अभी एक कोका कोला सॉन्ग आप सुने हैं, तो ये क्यों ना हो जाए।

0: अभी आप सुन रहे थे जब भी देखो बना ले लाल पीली अखियां फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। शहजादा है फिल्म का नाम और गीत का बोल है छेड़ खानिया।
1: William Byrne.

बातों में ऐसा उलझा दी जिया दत्ताई दल हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते, और क्यों ना एक ठुमका हो जाए।

0: अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तू झूठी मैं मक्कार शो मीडर ठुमका, और ठुमका के बाद तौबा क्यों ना हो जाए हुस्न तेरा तौबा तौबा।
1: मनीषा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

हुस्न तेरा तौबा तौबा फ्रॉम द मूवी बैड न्यूज़ से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते, और आपको सुनाने वाले थे करण औजला।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल नेक्स्ट टाइम।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: From the movie Laga Chunri Me Daag, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, की और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनेंगे कच्ची कलियां मत तोड़ो।

अभी आप सुन रहे थे कच्ची कलियां मत तोड़ो मालर ने देगी गालियां, और गालियां सुनने से पहले आप तोड़िएगा मत। सरसा हम देखे, जी हाँ सुनने वालों, फिल्म का नाम है विश्वात्मा। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई।

अभी आप सुन रहे थे सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, फ्रॉम द मूवी विश्वात्मा से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, मैं आप सभी से कुछ बतलाना चाहती हूँ और वो ये है, जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब है, जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है, मगर टूटने से क्या डरना, हर सुबह एक नया सवेरा है, अंधेरों से लड़ना ही तो है, इस राही का बसेरा है, कुछ पन्ने अभी खाली है, कुछ रंग भी बाकी है, जो बीत गया सो बीत गया, अभी ढंग कई बाकी है, सुना है हर एक टूटे तारे से कोई नई दुआ जन्म लेती है, अंधेरों की ये खामोशी ही तो उजालों को रास्ता देती है, सखम थोड़े गहरे हैं मगर मरहम अभी बाकी है, थोड़ा रो लिए तो क्या हुआ, मुस्कुराना भी बाकी है। त्रिदेव है फिल्म का नाम। सुनने वालों, इसी फिल्म से हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते तिरछी टोपी वाले।

अभी आप सुन रहे थे चिट्ठी टोपी वाले, म्यूजिक दिए है आनंद बख्शी जी और आपको सुनाने वाले थे अमित कुमार और सपना मुखर्जी। दुनिया हसीनों का मेला फ्रॉम द मूवी गुप्त से आप सुनेंगे उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। बढ़ चलते हैं हम फ्रॉम द मूवी थानेदार की ओर और इसी मूवी से हम पेश करते हैं तम्मा तम्मा लोगे। आपको सुनाने वाले हैं अनुराधा पौडवाल और बप्पी लहरी जी।

अभी आप सुन रहे थे तमा तमा लोगे, बप्पी लहरी और अनुला यानी क्षमा करना सुनने वालों अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे। मोहरा है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं उदित नारायण की आवाज में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले सुनने वालों में आप सभी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। चलिए मिलकर सुनते हैं ये सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मोहरा से

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मोहरा, से हमने पेश किए हैं उदित नारायण की आवाज में तू चीज बड़ी है मस्त मस्ती, यानी उदित नारायण और अलका याग्निक जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी खुदगर्ज से हम पेश करते हैं मैं से मीना से ना साही से ना पैमाने से दिल बहलता है मेरा, कैसे बताऊं नहीं बताने वाली, बस आप खुद सुन लीजिएगा।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी खुदगर्ज से हमने पेश किए हैं मैं से मीना से ना साखी से ना पैमाने से दिल महलता है मेरा कैसे आप लोगों के आ जाने से यानी आप लोगों के रेडियो सुनने से।

याग्निक और उदित नारायण प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, और गीत का बोल है, अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ क्या तूने किया जादू। फ्रॉम द मूवी राजा से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे अखिया मिला एक कभी, अखिया चुराए क्या तूने किया जादू, फ्रॉम द मूवी राजा से हमने पेश किए हैं सुनने वालों अभिजीत भट्टाचार्य और अनुराधा श्रीराम यानी श्री राम जी आपको सुनाने वाले हैं आ जाना छूले मेरी चुनरी सनम, फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर 1 से हम पेश करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे जिंदगी है दुआ रब की अदा कह के शुक्रिया जी लो ना। और ये गीत हमने पेश किए हैं राबिया जी के वास्ते फाहौन क्रू की ओर से, जबकि राबिया जी का कल सोमवार 10 तारीख अगस्त को जन्मदिन जो है, तो ढेर सारे बधाइयाँ शुभकामना आशीर्वाद और खुशियाँ ही खुशियाँ पेश की जा रही है फाहौन क्रू की ओर से। हम बढ़ चलते हैं अगला गीत की तरफ और अनिल साजू जी जो जीवन साथी है राबिया जी का, तो बहुत प्यार करते हुए ये गीत को मांग करते हैं राबिया जी के वास्ते, जबकि राबिया जी का कल सोमवार 10 तारीख अगस्त का अगस्त को जन्मदिन जो है, तो ढेर सारे प्यार और मोहब्बत पेश की जा रही है जीवन साथी के तरफ से अपने प्यारे प्यारे जीवन साथी के लिए।

बेबी डोंट ब्रेक माई हार्ट। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मोहब्बत से हमने पेश किए हैं और ये गीत कमांड करने वाला था अनिल सारजू जी अपने प्यारे प्यारे जीवन साथी अपने प्यारी प्यारी प्रीतमा के वास्ते यानी राबिया के लिए। जबकि कल सोमवार 10 तारीख अगस्त को राबिया का जन्मदिन जो है तो बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ अनिल सारजू जी ने ये गीत को मांग किए थे। प्रोग्राम में एक और सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं और जबकि राबिया जी का कल जन्मदिन जो है यानी कल सोमवार 10 तारीख अगस्त को तो अनिल सारजू जो प्रीतम होते हैं जीवन साथी होते हैं अपने प्रीतमा के वास्ते एक बहुत सा सुंदर गीत को मांग किए हैं और गीत का बोल है तेरी कुर्ती क्या है बड़ी सेक्सी है यार

अभी आप सुन रहे थे तेरी कुर्ती सेक्सी, और ये गीत को मांग करने वाला था अनिल साजू जी राबिया के वास्ते, जबकि राबिया का कल सोमवार 10 तारीख अगस्त को जन्मदिन जो है। तो प्रीतम, अनिल साजू जी ढेर सारे बधाई, शुभकामना और खुशियाँ पेश करते हैं अपने जीवन साथी के वास्ते। प्रोग्राम में आ रहे हैं आप सभी के वास्ते सरस सा हम देखे। जी हाँ राबिया जी, हम आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद पेश करते हैं फहोन क्रू के ओर से भी। और राबिया, जब के कल यानी सोमवार 10 तारीख अगस्त को आपका जन्मदिन जो है, तो खुश होकर के प्रोग्राम में अनिल साजू जी जो आपका जीवन साथी है, ये गीत को मांग किए है बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ आप ही के नाम। ठाड़े वास्ते दे देंगे जानवे फ्रॉम द मूवी शकलाका बूम बूम।

अभी आप सुन रहे थे थाड़े वास्ते दे देंगे जानवे, और ये गीत को मांग किए थे अनिल साजू जी अपनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी प्रीतमा के वास्ते, यानी राबिया के वास्ते। जबकि कल राबिया जी का जन्मदिन जो है, कल सोमवार 10 तारीख अगस्त को राबिया जी का जन्मदिन जो है, तो से ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद पेश किया गया उनके प्रीतम जी के तरफ से। राबिया भाभी, पार्टी कहाँ पर होने वाली है ज़रा आप बतलाइए तो हम ज़रूर आ जाएंगे आपके पार्टी में शामिल होने। फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं वेयर्स द पार्टी टुनाइट, और ये गीत हम पेश करते हैं राबिया जी के वास्ते। जबकि राबिया जी का कल सोमवार 10 तारीख अगस्त को जन्मदिन जो है, तो ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद पेश किया जाता है फाहुन क्रू के ओर से।

0: वैष्णव पार्टी टुनाइट अभी आप सुन रहे थे और ये गीत हमने पेश किए हैं राबिया जी के वास्ते, जबकि कल राबिया जी का जन्मदिन जो है यानी सोमवार 10 तारीख अगस्त को, तो ढेर सारे बधाइयाँ शुभकामना आशीर्वाद पेश किया गया है राबिया जी के वास्ते। और हमें आशा है जिस तरह से हमने कुछ फरमाइशें पेश किए हैं राबिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर फाहुन क्रू के ओर से, तो राबिया को ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। सुनने वालों, कुनाल गंजावाला आ रहे हैं, चनावे घर आ जावे।
1: आज जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ वो मेरे हीरो करण सिंघानिया, जो कि आज बहुत बड़े पॉप स्टार हैं,

कुना और गंजावाला आपको सुनाने वाले थे चनावे घर आ जावे। मैं होना है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुमसे मिलके दिल का है जो हाँ क्या कहें।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना से हमने पेश की है तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी फिल्म से आप सुनेंगे सेयोरिता।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सेयोरिटा। और सेयोरिटा के बाद हम एक और सुंदर सा गीत चलाने वाले हैं, और जबकि ख़ास करके मीला भी प्रोग्राम को सुन रही है, और अभी अभी मीला का तार आया है अंदर, और मीला क्या कहते हैं कि हम बहुत मज़े ले रहे हैं आपके प्रोग्राम से। तो मीला जी, ये गीत हम पेश करते हैं आप ही के नाम।

मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए फ्रॉम द मूवी दबंग से हमने पेश की है, और ख़ास करके ये गीत हमने पेश किए हैं मीला जी के वास्ते, जबकि मीला जी ये प्रोग्राम को सुन रही है। तो मीला जी, अभी अभी आपने तार किए और कहा कि मैं बहुत सुंदर प्रोग्राम पेश कर रही हूँ, तो ये गीत हम आप ही के नाम पेश किए हैं, और हमें आशा है कि जहाँ पर भी आप होंगे आप ज़रूर नाचे हुए होंगे इस गीत के साथ। कल हो ना हो है फिल्म का नाम, तो इसी फिल्म से हम पेश करते हैं इट्स द टाइम टू डिस्को, क्योंकि आज आज पता है क्या है, नहीं बताने वाली।

अभी आप सुन रहे थे इट्स द टाइम टू डिस्को। सुनने वालों, ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। जरा सा हम देखें, जी हाँ ये हो जाए।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a nice Sunday and take care of yourself. Till next time.

ऊंच नीच कला न जाने जात सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहून के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जोनी नंबर वन है हमारा राम। आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

दोस्तों आज भी हम फेसबुक के माध्यम से और यानी कि ऑनलाइन हैं। अगर या आप हमें देखना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं, तो आप लाइव आ सकते हैं और हमारा प्रोग्राम को देख सकते हैं। जैसे भाई टोनी इसरी आ गया है और वो भी हमारा प्रोग्राम को सुन रहे हैं बड़ा जोर शोर से। तो सोनी जी, टोनी जी, आपको हम यहाँ दनहाख में स्वागत करते हैं अलमेरे शहर से। हमारे प्रोग्राम में आपने भाग ले लिया है, ये है टोनी इसरी जी, नमस्कार हो। तो हम तुरंत बढ़ते हैं अपना देश और विदेश की समाचार की ओर। हमारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे जनता, तो बातचीत क्या है हमारी जनता? वेनेजुएला का कहते हमारा सूरीनाम देश के वेनेजुएला जाने हैं, कुछ दिन हो गया है वहां पर अर्थक्वेक हुआ है और सूरीनाम भी अपना हेल्प को आन्वित किया है, लेकिन यहां अब कुछ और लिखा है भैया। वेनेजुएला के बारे में बोले सूरीनाम खनुम थे वेनेजुएला सूरीनाम खमूद एगो आस रूता है, सरनाम एगो रूता है, वेनेजुएला से रूता है, जोन कोकाइन या सरनाम से यूरोपा में जा है। हाँ तो धर्मेंद्र वेलकम। तो बताए गए हैं धर्मेंद्र कि सरनाम जैसे को स्लोप रूत जो आदमी शिकारी कार खेले है जंगल अंगल जा है तो लोग जाने रस्तों कैसे बोरो करके हिया जा है हुआ जा, तो ऐसे सबन कोकाइन रूत बनाए से फान पारामारी बो सूरीनाम नार है यूरोपा, यहाँ लिखा गया है हमारी जनता। तो हम बोली बताई वेनेजुएला के हुआ के रखेरिंग बोले है गा अंदर देल है जो इंटरनेशनल स्मोकल रूट है वेनेजुएला के, वो जा है फिया सूरीनाम से। वेनेजुएला के रिसर्च बोले है गा बोले जितना क्रिमिनल और खानी साक्षी है, हाँ बोले जो उनके समान अपहरोत बा जो उनके पकड़ी से बोले है गा दी फॉल्कंस हेट ऑन द सुख बोले उस सब खबरों की मांग करता क्लांड सिटी द लैंडिंग्स बान इन द स्टार अनजोवाटिगुल में, वे को लैंडिंग्स बान है हुआ से समय प्लेनों उड़ावत रहा पूरिया से नाना, और बोले है का बेड ऑपरेशन बोले आठ गो लीडर के समान पकड़ी से का बड़का और खानी सांसी के वेनेजुएला में, बोले जेकर पास भैया ओ तो मोई मोई मिलल है बंदूक मिलल है कम्युनिकेशन अपराट्यूस मिलल है एंड अंदर खुदरन सब असलाख ले ली से, और बोले इलिखाल लैंडिंग्स बान भी पाई से, और बोले ऑन सुकर्स बोले है ये सब ड्रग्स ट्रांसपोर्ट होवत रहा, और बोले सब ऑन क्लार करी से और रूतराफिया सूरीनाम भैया यहाँ बताई गई फोर्कस फेनिश्रीलांस ऑन द सुकर बोले फरफूर द ऑर्गेनाइजेशन बोले कोकाइनवा बोले वेनेजुएला से ले जात रहा गयाना, गयाना से ले जात सूरीनाम देश, दस वेनेजुएला गयाना के बगलिये में बा, तो अपन प्लेनुआ में कोकाइनुआ ले जाता गयाना इंग्लिशमान के देश में, तो हुआ से आवत रहा सरनाम में और सरनाम से पूरिया जात रहा यूरोपा के बाजार में, ना दनहाक के बाजार में यूरोप से मरक पे जात रहा, बोले यही है का स्मोकल रूट जो वेनेजुएला से कोकाइन जा है यूरोपा में। फॉर दोफन मिडल एन बस्ती में बराई कर जो यूरोपा में आ जा भैया, तब हुआ एन बस्ती में है तो यूरोपा में सब इधर उधर बोले बिचाई शुरू हुए है, तो एक बारे में फिर वेनेजुएला के ऑथोरिटेटन ऑन मांतल कैसे को बड़का और खानी सासी के जो इंटरनेशनल ड्रग्स सबन यानी कि पठावत रहा यूरोपा में ऑन द सुख मुख लगे मीड फरदाख्तन एंड इंटरनेशनल फर van het netwerk wordt voorgezet abbe saban doro khoje hai ki aur aur ka hai ekar bare mein, to ye hai Venezuela Guyana और सूरीनाम से कोकाइन आवत रहा यूरोपा में हमारी जनता।
तो हमारा बहन भाई आ गया है सैफ बे लेडिंग से और वो है चित्रा अवतार। आपको हम स्वागत करते हैं दीदी जी, हमारा प्रोग्राम में भी आप भाग ले लिया है, जुड़ गए हैं, बस सुनते रहो और आगे के समाचार आप लोग को हम क्या क्या बताएंगे। सूरीनाम के बाद में सूरीनाम में यानी कि हुआ स्कूल के लड़कन भैया डिप्लोमा पावे वाला है, जो सलाख भाई ले अब सितंबर मानदा आने वाला एग्जाम प्रयुदय है और यहाँ बतावे है का वांग का बोले वांग भैया, फिर यहाँ पे के को पार्लियामेंटारियर है उसका नाम बा शुवांग राय वांग बोले है। अब देखो का भर सूरीनाम में जितना लड़कन सलाख भैल मेदरबार स्कूल के बोले उस सब जे जाई अपन डिप्लोमा लेवे के संबंध के चाहेगा फिर 105 तक एसआर दे भरे के। हाँ मुझ 450 SRD बताल ओम द डिप्लोमा तो ऑन फंगन इची तुम पहला नहीं सुने ला भैया जइयो अपन डिप्लोमा एक तो मेहनत कर लो है अब सलाख भाई लो है और अपन डिप्लोमा लेवे के तब जइयो 405 तक SRD भरे तब जइयो अपन स्कोर्स डिप्लोमा पियो। एक बारे में यहाँ पे एक पार्लियामेंटारियन और हैगा युवांग रोई वांग एक दौड़ रख के दे नाम एक बारे में बोली से कि मेदर बाल स्कूल वार खसलाह दर ले लेंगे मुझे सूफिल खेल बता लें और बोले हैगा डिप्लोमा ऐतराइकिंग पे कुछ है 405 तक भर देवे के खवार मेरे तक कॉपियन कोम दान 165 ऐसा देर बे बोले जो तुम मंगे कि उस सब तरह का कॉपी भी बनाई देवे तो कुछ है 165 ऐसा दे भरे के तो खवार मेरक तो कॉपी है तो के बनाई दे सरकार को कॉपी भी तो के बना दे ओकर खा भी पैसा भरिए तो बोले यंगरन हेवन हील यार हर्थ खबरक मेन से। हाँ लड़का स्कूल में काम करिस अपन और उसे मेहनत करके अपन डिप्लोमा निकाली से और बोले ऑफिशियल बवेस एंड वार देर फन प्रेस्टासी से दवांग एंड मुझे सुनो खल्त एर फुट बतालें तो एक बारे में बसवार करी से भैया पार्लियामेंटारी दैलक हैद मांगी सेगा का बोले मिनिस्टर डेरक क्यूरी से जो अंदरवेस के यान के मिनिस्टर हैं और बोले हैगा बकैन खवर्धन के खसलाख दफा मेरे बार स्कूल अंतोन द कॉम यूनिवर्सिटी के जो जो हुआ पे खसलाख भैल भैया 2026 तक 2027 में बोले उस सबके चाहे और भरे के मेयर से नूतन बता लें और इंस्क्राइब ये इंस्क्राइब करे तो अब तो चाहे इंस्क्राइब खेल 5000 एसर दे भरे के जो तुम ये यूनिवर्सिटी में जाए के और जेकर बाप माई गरीब है भैया वो कैसे भरी धिया बताई गए हैगा कि पहले रहा कोलेश में उस सबके इंस्क्राइब के अल्ट्रा 4200 एसर दे अब ये रखे रहे जो आए गए हैं सिमोन्स के और रुसलान के अब वो 800 दिराक बढ़ाए रही से और हो गया 5000 और एक बारे में बताई से कि जो लड़कन डिप्लोमा जाए मेरे बार वो के चाहिए 450 भरे के और कॉपी मंगे तो कॉपी भी तो के दे तो वो कर खा तो के उनको फिर 165 एसर दे कॉपी के भी पैसा भरे के परी। तो ये बात है हमारे जनता सूरीनाम के बातचीत हो रहा है हमारे प्यारे प्यारे जनता। और तो लोन जानो भैया यूसीसीएन पुलिस के नाम बहुत बिगड़ल है भाई अब में बतावे अरे तो लोन जाने अब क्विकवा ना मिलल है भाई जो चोरी बैला कौतुक पुलिस विरोध से तुम एक बारे में जानो है ड्रग्स लाश हुए है सोना लाश हुए है स्कौतु ले ले भग या भैया लेकिन अब तमाशा देख भाई बहुत बड़का चकल्लस वाला चीज है मुर्गी के बहुतू सबन जो खा है जनता ओके सबन बसलाख करेला उसको तो चरा ले भैया अब एक बारे में हम तुल खबरें हम बताब यहाँ पे जो ओकर बेड़तवा आई तो ओकर बारे में बतिया और हमारा मिनिस्टर जो है हनीस मनोरथ का बोले है वो खाली अपन यूसीसी के नाम फार्म बदले भैया चोर और ठीक से ना पकड़े मुर्गी बहुत तात देशों में से चोरी होवे लगल है तो मिनिस्टर बोले बोले अब हमार मिनिस्ट्री के नाम ना है ना मिनिस्ट्री फॉर यूसीसी एंड पुलिस बोले हम लोग के मिनिस्टर के नाम हुई है
ministerie van justitie en veiligheid. Veiligheid, ja, keer veiligheid. Kan zijn naam me waaien, ben wat daar ben. Kie dam pe chalat admilok ke balkon me roof hoe we, charo bagal roof hoe we heen. Ahamar hanis manorat, naam van ministerie, yes bol jor ha. Ook een naam 7 tarik augustus ke, officieel, bolle verder gaan. Au naam ministerie van justitie ke her deze, minister van justitie en veiligheid. Het heeft minister Hanis Manoder woensdag bekendgemaakt. De naam wat lessen je veiligheid. Hoe jij gaan, bhaiya. To oma, bahut badka kaam hai. Naam toro kaam chahe badlek to humar, bhaiya. Kumar Shami bhi aayega. Rakesh Samuj bhi aakar humar prakram mein jut gaye hai. To rakhe ja naam badal lega. UCC and policy ke. Ki UCC and veiligheid. Agar matlab na to desu hame veiligheid kar diye. We maak deze man voor de gek mensen. Naam zegt niks. Je moet je werk gaan doen om de veiligheid van het land namelijk te waarborgen. Om de veiligheid te garanderen voor onze mensen in Suriname. En dat hebben we niet. Volgens de bewindsman is de naamswijziging 10 tarik augustus geformeerd. Ze hebben doorvoerker eraan. Op Bolle Hega, minister T75 jaar bestaan in ministerie. Manora gaf aan dat de wens om de naam van het ministerie te wijzigen al reeds 20 jaar bestaat. Maar de keuze voor de term veiligheid wil de regering benadrukken dat alle veiligheidskorpsen onder één noemer worden gebracht. Dus we hebben een keer een mooie veiligheid, je derde wit kan doen, janta ke utra veilig bieden karpabe, kina bieden karpabe. Bole utra din se sefan mangatra kare, bole na kape ab deko bhaiya, ego nikeri ke baad de, inspector otom jatra bhaiya, jure oto ulit ge nikeri me, haan, ab pata na hai kaban dadu dhakole ra ki kaunchi dhakole ra bhaiya, huan dhakole राज बड़ा ढेर चले है तो 12 दिन पे भैया बुद्धू आएंगे है कहां रहले दिलप बुद्धू स्वागत है यारो आपके देख के दिल खुश हो गया तो बुद्धू बात ऐसे भैले बोले निकेरीम सिपाही जा ऊपर से इंस्पेक्टर भैया झूरे ओ तो गोत्रों में उलट गए है तो बोले रस्तो में होल्ला बोले अंतवे कल्ली बाटी तो जितना ओ तो होलवा में से अंतवे करे तब तो सबके चांतरा उलट जाए के दिस दैट क्लब तो नहीं मेंसे Dat klopt niet. Kiet ego hol kan ontwikkelen door auto lirge oma aur kuch hoi jarur. En want hoa se ikke auto thoro pas hoi hai. Buddho din bhar auto pas hoi hai. Aur skoutu ke auto.

हाँ दोस्तों, तो निकेरी के मानचित हुए के इंस्पेक्टर है, बोलो बैठल रहा और एक मेला तो हुआ चलावत रहा और जाए के ओ तो गोत्रों में गिर गए है, उलट गए दो तीन कलैया मारी से। निकेरी के मानचित हो बोलो अटवेक कर ले रहा होल के, तो होलवा सबको जो अटवेक करे तो हुआ दिन भर चाहे ओ तो उल्टे के हुआ जरूर कुछ भेद हो, लेकिन ओकर बारे में सब ना बतावे हो सके। ओ तो हुआ चलावे और ढकोले लाल हो सके है, सब टेलीफोन में बेसक हो सके है कि सब ख्याल ना करे जो होलवा नाम ना ताके हो सके बड़का सनल है पे हुई वन तो वक कई कलैया काट से दस से खसे से से के बोले अंतवे के से को होल के तो वो उलट गए भाई। सो मक्लक इस इंसुरी नाम दस मक्लक सन फाउट कुनन खाम बदेक मेंसे सांदर ओवर हिल होए कि कोई न जाय अंडरसुक करे मद सैन वे ही नी लोंग दिस बदु हम नुन एगो बात जे बतियाला त हम नुन ओके इनम जर्सी लेके पुणे तक ओके ताकेला कि चीजवा कैसे है कैसे ना है। और झूठ जे बोलियो भैया तो ओही आदमी लगे पास होइए जे झूठवा ना पकड़ पाई, मार हम लोग यहाँ नीदरलैंड में वह कई फेरदर ना बोले हुआ के आदमी ना देखेगा, मर मिंदर सवन आंदाख देवे है हिया बोले हैगा इंस्पेक्टर सिकन हाइस में गई है बोले दे तू द्राख फान है उनको फॉलो और फेरदर ऑन द सुक नतील आई ही नार में भाई ले ही द साक ओवर खदराकन फरकेट ऑन द सुक रिहू वेस्ट में। तो यहाँ पर हम बोली तुल के बताए दे एगो वे तियोता अक्षियो रहा दोनों दाग के रात के खराक बे एन एन सैदे के फरकेस ओनखले इन द ओमगेवा मिडस्टन पोल्डर इन सुरिनामे तो बताए गए हैगा बोले ओंटवेके फॉर अन कॉइल मेंसे दैट लाइक मी हील एर स्टेरक ऑफ दैट वेल वार इज जानो बोशे बरक सुरिनाम में सब कोई जाहिया सर नाम से हमार तोनी जब जाए तब पर मोतर फिसवा उड़ावे है बुद्धू भी उड़ावे है सब कोई जाए बोशे बरक पे भैया बकी तू पड़ किया जो है ओकर अंदर हो वो होवे कि ना होवे है जब सुनियो तो आदमी कूदे है छलांग मारे जैसे स्वयं बात के काबुल स्प्रिंग प्लंग पर से सब कूदे वैसे हुआ कूद कूद आदमी जान देवे भैया। हली एगो लड़की कूद के मर गए रहा तो एक बारे में एगो मलैनी है शादी है भैया एनडीपी के और इस शादी बोले बोले कि अन वैद बॉस के बड़ो की चाहे अंदाख देवे के ना कि कुदियो पर ना अंदाख देवे के बोले हैगा अन शादी बोले पार्लियामेंटेरियर है बोले कम टेकनिक बना है बोले द ब्रुक इस मार क्लास 60 द पार्लियामेंटेरियर फ्रा कि बोले हैगा चाहे इंस्पेक्सी करे कि बड़ो के गिर ना जाए सब कुछ बेतन तन मोई है कि ना फॉर हर इंफॉर्मेशन द ब्रुक मार क्लास 60 एक्ट दारिन टू इन daar tegenover is het feit dat de brug sinds haar oplevering in het jaar 2000 inmiddels maar 26 jaar hoe je zwaar overbelast barka barka teruggrind leek ja hij santi leek ja hij olie tankers houtblokken moet dragen. Door de volksvertegenwoordiger werd er vooral opgewezen dat de dynamische belasting heel funest is door het trillingen waaraan de brug op een dagbasis wordt blootgesteld. Toen iemand zei sadisch to hem eens Barty, ki jab ego cheez hai to oke chahi onder hout bhi ikhre ki ha to ta hum bhin jaye na hanis manorat lage bhaiya minister manorat bole hai ga bole for common the Suriname and policy start what ik weet niet wat deze meneer Manorat allemaal wil namelijk justitie en politieke naam dat is justitie en veiligheid of willen voor zelfstandigen van afdeling instituten willen hij ook een mange kere daar willen preventie van de criminaliteitbestrijding in de enige benaderingen als zat daar ik heb 75 jaar bij lega minister van justitie en politieke barilamba lamba chora likale maar ik hem daar is hij hebben gekregen dostoe karen कि और जा रहा अच्छा अच्छा और न्यूज वहां हमारे पास जो आप लोग को हम नतीजे सुनावे मंगेला। अब देखो भैया लोग बोलिए जोनी कुछ इन बराक के राख के बारे में खोजे कहिए ना है बुद्धू जा खोलिए भड़बड़ आवे इन बराक सुरिनाम में फन हीर तो दार है और हम लोग के मिनिस्ट्री बोले है बोले हम लोग फैल हाइट हो गई बाटी माहिया बतावे हैगा पॉलिसी फरे बकी तुई होंदे देर तक आदमी के पकड़ी से रजिस्ट्रेर करी होंदे सेशन सेफ तक घर तुरान भैया होंदे सेशन सेफ तक इन बराक एक महीना में होंडा सेशन सेफ तक घर तुरान है हमारा सुरिनाम देश में। हाँ तो एक बरिस में कितना होएगा भैया कुमार एक बरिस में कई गो होएगा
एक बरिस में तो कह गो जब 12 दाई होंदे से इफने से अस्तक जब जोल ले तो 10 दाई तो 1700 1800 काने कह रहा हो जाए भैया हजार हवड़ा हो ये जोन खाली हम लोग के घर में हम लोग के देश में घर तुरान है और ओकर बारे में होंदे सेशन से इफ तक इन बराके में तुए होंदे देर तक अनमी के पकड़ी से मना सोचे हर एक घरों में एक आदमी जा है उस सब जा है चुरवंत अपन खुरू बन के जा भैया जैसे पिंगो पकीरा जा है आंख बन कर ले करिया मस्कर पहन ले पिस्तौल कटलीस चांपू हथौरी फतौरी ले के जा जैसे टेमड़े मान भैया तो हिया बतावे हैगा Tussen 27 juni en 2 augustus landelijk zijn 230 animiek pakkerissen. Op de hege oma zijn 144 verdachte. Abena boys kohi. Op de hege John Banduk se Chowel se. Bole hege animiloke mesandel kerkelise. Ema se 13 go. Chowapen overval bij hege 35 go. Ze van beroofing karise pistool se. रूफ करी से 35 को ओही बदरखवा में से जो हम बता रहे ली 35 को खवापंद ओवरफॉल भेले साथ साथ अबे बता रही हूँ तो सस सेफ तक इन बरा के घर तुरान है और रेवाइस इन डर तक गोक सबन ले ले सेगा बोले जेमा दुई को बंदूक भी मिलल है पिस्तौल भी मिलल है और बताए गए हैगा डर तीन को खफाल रख स्त्रेर भाईल है और बोले है यहाँ पे दोस्तों कोरस पुलिस से नाम ब्लेफ पुलिस पर्सनल से ऑन द स्कार्स मिडलन एंड अंदर बपेर के इनसेट ऑन द फेलाखाई इन इट लैंड वारबोर्गन तो आप लोग को हम यहां से बधाई देते हैं किसको तू और जोर से काम करो सही फरवा हमें बड़ी कमती लगे है बहुत कमती लगे है और बोले तो हमारा काम है भैया हम लोग मीडिया के जबले हम लोग के असली असली यानी कि रिजल्ट ना मिली हम लोग कभी पूछती बोले वाला ना है वैसे स्क्रिप्टी de regering, we zijn scherp tegen de overheid, we zijn scherp tegen de politieapparaten, we zijn scherp tegen onze mensen. Iedereen moet veilig voelen in Suriname en ook hier in Nederland. Totdat ze niet meer veilig voelen, zal ik door blijven hameren mensen. Dat is mijn werk en niet anders. तो हमारी जनता हम चलते हैं आगे को अपना समाचार को लेकर हाँ तो हम भी आप लोग को कुछ बैतलान के बीच समाचार को सुनाएंगे अब देखो भैया तुनो जानो है हम फिन जाएला का बोले हॉर्मुस की ओर स्त्रात हॉर्मुस तुनो सबको जानो है हर हफ्ता हम ओकर बारे में बताएला और वो हैगा ईरान के यहाँ से सब बुटिया नावे तेल के प्राइस चढ़ जा है तेल के प्राइस चढ़ल जा अमेरिका बम्बा देर करे ईरान के किस तरह हॉर्मुस कोल बुटियन फील हबड़ा हुए हम लोग के तेल आ चुके तुए यूरो फिर तक फाइवन देर तक है यहाँ पे भैया और तेल चढ़ जा है एक बारेल रिव तो रिव ओली हो ये मेयर दन होंद डॉलर हैगा इन फैक्ट साथ साथ अब अमेरिका ना ले से हॉर्मुस के बारे में तो अभी क्या करे है ईरान जो नहींगा सऊदी अरबिया भी दागे लगल भैया योर्दानिये के दागे लगल जहां जहां हम लोग के यानी कि जहां जहां त्रिम के अमेरिकन से बासे से उद्देश्यों भी बसकादक करे लगल है तो अब इस पे एक मितोद खोजिसेगा कि तीन देश एक हो गए भैया मेरे औस्त के तीन देश और एक हो गए वो हैगा सऊदी अरबिया पाकिस्तान और तुर्कू तुर्कैया भैया तुर्कैया सऊदी अरबिया पाकिस्तान और तुर्कैया उस सब एक डिफेंसी अकॉर्ड करी से जैसे हम लोग के यहाँ पे यूरोपा में हम लोग कहेगा एयू हैगा स्टेन दैट के कितना लैंड है फ्राक में इवन इज प्रसीज मा वी वेट वी सेन इन द एयू वी सेन इन द नाटो लम दस शख द तो नाटो में जो कुछ कल्ले बाटे द खाद हेल नाटो टेक ऑन ऐसे सब मेरे ओस में तीन देश हैगा जो अपने में को अकॉर्ड डिफेंसी अकॉर्ड टेकन करी सेगा कि हम में कोई दागी तो एक वो हम हेल्प करी दो तीनों देश के तू अनफाल कर ले बाटे तो लंगा डाम से हमारा हमारा लीफ टाइट खनोत हमारा स्कूल के दोस्त जहां हम लोग संगे स्कूल जात रही एट के लंगा डाम पे वो है रॉय काली भी आ गया है तो हमारे प्यारे दोस्त आपको हम बहुत प्यार से अपना प्रोग्राम में स्वागत करते हैं तो हम चलते हैं स्वागतम तो हम चलते हैं सऊदी अरबिया और पाकिस्तान
के बारे में और तुर्कए के बारे में इन तीन देश एगो डिफेंसी अकॉर्ड करिसना सामो में डिफेंसी मतलब कि मिलिटेर के समय जितना है तो एक बारे में टोनी भैया सुन जाती है राहुल तो डिफेंसी के चीज ढेर जाने नतील जितना आदमी ऐसा सुनेगा हिल्फ मेन से वेट व्हाट डिफेंसी डिफेंसी अकॉर्ड इज. Maar ik zal het toch even beter nog proberen uit te leggen dat het nog goed overkomt. Defensie zijn de militaire akkoorden. De militaire akkoorden is op 10 des teken. Kan is dat je iets in de zwak je kooi dagi gaan. Als je kooi tegen Turkije kijkt, dan kan je ik van de zwak niet kunnen halen toe mee te gaan. Maar je zegt dat je NATO-landen hebt. Toen ik president John Hega Erdogan heb. Saudi-Arabië, de kroonprins Mohammed bin Salam heb. En पाकिस्तान के जो प्रीमियर हैगा शहबाज शरीफ है और इस मक्का में गईल है सऊदी अरबिया में और वहाँ पे तेकन करी से कि इस तीन देश के ये छुईगा दागेगा बोले तो हम लोग के दागे से ईरान इस सब के दागे से यानी कि सऊदी अरबिया के दागे से यॉर्डानिया के दागे से मिडल ओस्ट के बारे में है हमारी जनता तो यहाँ बतावे तो ओवर इन कॉम सिम्बुलेर दसामल के इन सेट फन द्री स्टाटन ओम हिट कॉलेक्ट actieve veiligheid te versterken en vrede, stabiliteit en welvaart in de regio en daarbuiten bevorderen. Het komt naar de Pakistanse premier Saheb Sharif, Turkije Wala Erdogan en Mohammed bin Salam 28 februari ke ik er bare mee aur kaam kari se teken hui gaye hain aur cheez likhal hai dosto lekin yahan bataye gaye hain that Pakistan's carrying weapons and ervaren legers Turkije geëvanceerde wapensystemen in een lidmaatschap van de NAVO en zou de Arabische economische macht ontstaat een krachtige alliantie die gericht is op het collectieve veiligheid en stabiliteit mensen. Laten we even hopen dat de oorlog tussen Amerika en Iran stopt mensen. Dat wij allemaal op dit moment zo duur betalen voor onze benzine. Hamloke telke, hamloke trabharela. Aur isab chit jahe wel. Verbeter hoe ik je. Maar jab dekho te stop hoe we. Okar baat me wapen invoer kalle we hege. Ta fin suru ho jahe. Oorlog hoe ik je. Hai nai chi joa hamare nani. हमारे प्यारे प्यारे जनता आप लोग सुने हुए हुतुस के बारे में रोई हुतुस के तुलन जने हुए येमन में है भाई येमन जो समय पे अमेरिका और काबुल है इसी ईरान लड़त रहा तो हुतुस येमन में एगो ग्रुप बनाई से तो इसब दागत रहा योर्दानिया के तेल के बोट डागे रहा भैया इसब अनफाल कले रहा योर्दानिया के तो योर्दानिया की सब दागे रहा येमन में इस सब एगो ग्रुप हैगा कहां बोले हैगा येमन में वारफान येमन हैव सन एक रेगिंग एंड एक लेखर है जैसे हिजबुल्ला हैगा उ ऐसे एहू सब हैगा हुतीस तो इस सब काम करी से अपने ही देश में अब दागे के शुरू कई से येमन में एकर बाल में हुतु एगो रेबेल ग्रुप है यार रेबेल है भैया जैसे अब हम बताएला कि अन रेबेल इस टेररिस्ट सेग मार तो इस सब येमन में बा अब येमन में शुरू कई से का बड़का बड़का वापन से दागे के और इस सब किस ट्रेन के करे ईरान करे भैया ईरान करे है हुतु रेबेलन ड्रोन अनफाल करे एगो प्रोफेसी के नाम मारे येमन में और वहां पे बहुत आदमी के दाग के माढ़ल ने है और यही में से मिलिटेर ब्रोन जोन बतावे हैगा बोले 58 को मिलिटेर बोले ख्रोता अनफाल हुतीस करी से जो उस सब के सुर जाती उतरा ढेर मर गए ओही देशवा में और बताए गए है कॉन्फ्लिक्ट इन द दौर ईरान खस्ती द हुतुस ए इंटरनेशनल एरकेंद्र रेगिंग फन येमन और का बोले जोन येमन के रखेरिंग ओके इंटरनेशनल ओके एरकेन करी से हुआ कर रखेरिंग कि ताई हुतुस ना मांगे हुतुस मांगे देशवा ले वे वार ऑन द होस्ट सा साना का नाम भाई येमन में बीते हुए महीना में लुक अनफाल भाई ला साना में भैया हुआ सब बमबदेर कर ले रहा एगो ईरान से तुस्टेल सो क्यों लंदन बड़े लॉक्ड रीस फॉर हेल्स एक्सी आउट सऊदी अरबिया के दर फरांतुर लक वर्क होल्डर फॉर द अनफाल तो जनता आप लोग को हम
बीच बीच में मेरे उत्सव के भी कुछ बातचीत आप लोग को हम बता देते हैं कि मेरे उत्सव का हुए कारण कि लोग सूरीनाम के न्यूज सुनते हैं, लेकिन हमारा कहना कि बैतलान की न्यूज भी आप लोग को जानना चाहिए कि हमारे देश में होता है क्या, वो तो हमको मालूम होना चाहिए, लेकिन और देश में क्या। आप देखो भाई, अबे आप बता रहे ली बता रही रॉय सुनिए स्पांग सूरीनाम देश में भैया कुवेक चोरी हो गया, आज तक पता ना मिलल है। सोना चोरी हो गया के आज तक पता ना मिलल है। कुवेक कोई डर से सर मक्का में कहां बेना लाल में सब मछली मर के उतराई गया, पता ना मिलल है। और कितना कितना इसको तू एगो बड़का दृश्य गिल से कई रिश्तेदार के पुलिस ब्यूरो में से निकाल दे से अबे पता ना मिलल रमिया कहां सबन खोजे है इसको तू पकड़ाई के बन भइल है। तो स्कूटू लोन सूरीनाम में भैया चुकू लेवे है 2000 डाला भर दिए तो कफर ब्लाई फर क्रेडिट मिल जाए निकल ला भैया। बीते हुए दिनों में हम बता रही लेकिन यहाँ बातचीत हुए। अब सरनाम के सिपाही बस लाख करी से मुर्गी के बहुतू मुर्गी के बहुतू बाकी अब मुर्गी के बहुतू पते ना मिले कहाँ है बुद्धू। अब देखो चकल्लस भैया मुर्गी के बहुतू अब पते ना मिले। अब सबन देयना में खोजे है को लंपू बार बार खोजे देयना के कुर्सी के नीचे बार बार खोज एक ओवर ड्राइव में बीच में से मार द बदुलिंग इस नाम ले ओवर वार ओवर ऑल वर्ड द अंडर ना ना द किप बाउट के सो हम लोग यहां बोले ला किप पाउचेस सिरी नाम में से बोले किप बहुतू मुर्गी के बहुतू बस लाख करी से चिरवा के दुकान में कानी कहां बसला में मुर्गी के पता ना है मुर्गी के बहुतू के कि कहां भैया। और इसे स्टॉकर एफर्ट के पॉलिसी ब्यूरो में तू जाने सबन ले ली पास करे है जे तू जइयो अल्बिना तो हुआ स्टॉकर एफर लगे हुआ रुकियो तो हुआ पे आदमी लोग बड़का बड़का पाकी मुर्गी किन किन ले जाल बिना तो सबन ओके बस लाख कर ले रहा मऊ मुर्गी का पता ना है। अब का बोले है असेंबली में एक बार में मुर्गी के बहुतू खो जा है भैया। अब बोले हैगा बस लाख नाम ले इफस में ले मेरे पॉलिसी कंट्रोल पोस्ट होकर एफर में मंगर के वो असेंबली में बहुत बड़का कृतिक भइल है। और बताए गए हैगा जितना चीज सबन बस लाख करी से कोतवन स्टॉकर्स एफर्स के कंट्रोल पोस्ट में कुछ ना मिलल है सौदा पानी भी ना मिलल है। अब का बोले बोले मुर्गियन कहां है तो शिशाल शिशाल मीडिया बोले बोले मुर्गियन कोई के पेट में होई तो बोले कोनो मसाला बनाई सोई तो बोले कोनो आलू में बनाई सोई कवाई गए ओके बोले स्कूतन खा खा बोले पेट बड़का बड़का करके जबर जबर सब हो गए दौड़ ना पावे स्कूतु के पीछे चोरन के पीछे बोले यही सब बहुतन शिशाल मीडिया है जो फिल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। और हम भी तो लीवर करे खिलवाड़ तो ला करेला यार दैट इज कौन जो मींस व्हाट वार है दिस मुच वेल ना फॉर बरेंगे। तो भाई तो मुर्गी के बहुतू ना मिलल है तभीया बताए गए हैं बोले ट्रांसपेरेंसी से मांगे दे ना में बोले के पो बाउच से अंदर बदरफंद प्रोजेक्ट तो uiteindelijk zijn gebleven waar zijn ze gebleven। और यहां बताए कंट्रोल पोस्ट फ्रांस गुयाना के आप लोग जानो है बोले हुआ के फ्रांस गुयाना के देश के सी भले क्लाख्त करी बर्खस बोले मेर के पबाउचस लेफस मिडल अंदर बोस कापन क्वेट राखते मेरे कंट्रोल पोस एनडीपी के पार्लियामेंटल सेल्फाना अफोंसुआ जोन हरदम चिल्लाई चिल्लाई बोले ओई कल्ले राखी बोले बोले जमजोन बोले रहा कि औरत के नाम आके भले के प्रेसिडेंट बोले सब औरत हम लोग चली जा बहरे बोले हम लोग सब कोई चली जाएं बहरे। तो जितने लोग ट्रेन चलाते बस चलाते आपको वर्क सेवन से तो यहाँ बताते हैं लोग कि अब काम पे न्यूज सुने से थैंक यू। तो बात चीज़ ये रहा है कि अब कंट्रोल जो फ्रांस से ही आदमी यात्रा पर मुर्गी बहुत ओहू बोले हम लोग के कुछ ना मिलल है। अब सेल्फानो आसनसुआ का बोले है बोले चीजों कहाँ है बोले हैगा इन वेलकूफिल Zij stelden dat de Surinamers die naar bijvoorbeeld Nederland reizen vooraf precies weten welke producten ze wel en niet mogen invoeren, terwijl vergelijkbare richtlijnen voor reizigers vanuit Frans-Guyana ontbreken. Daardoor lopen burgers volgens hem de risico onbewust regels te overtreden.
तो बोले ओहिक मारे चियो अरे भैया जब असलाख कर ले बाटे दम उत तो फर्नीत फोर द वाट से द किपो बाउचर फर्नीत विल द है वेटन असम बिना बना डॉक्टर दा द सामलीव रेक्ट हिप ऑफ डुइडलिकहेड एंड वार्स्क्यू द दैट द इंड्रुक मुट वर्डन फोरकोमन दैट इन बसलाख गनोमन कुदरे इन प्रिवे केकंस प्रिवे केकन बामिना सिपे बना ले भैया द प्लेट द टेवर फॉर अनफंक स्प्रिकपिन बोले बामिना सिपे बनल भैया एकर बारे में अब जय महेंद्र जोगी का बोले जोगी महेंद्र जोगी भैया दिस किसी ओवर द रिडिस स्टेटस फ्रॉम द कंट्रोल पोस्टन जनरल पावी रेजो एनपीएस के फ्रूक द मिनिस्टर वेलके वेटके ग्रंडस्ला ब्रंसाइट एंड स्टॉलकर एवं अल्स ग्रैंडपोस्टन वर्डन आंगमेरक वोल्गेंस हिम ब्रिंग द क्वालिफिकेशन इमर्स बेवोगदेडन मेट सिख मी तो मिला अवत हीरा भी आ गया है और आप भी बड़ा दिन पे आए लो बाटो मिला जी नमस्कार हो वेलकम सुनील दत्त गजरी आपको भी प्यार से स्वागत करते हैं साथ ही साथ मिला को भी तो हम चलते हैं और आगे को अपना गर्मा गर्म जमजान को

आप लोग को हम एक गीत सुना दे। अबे बता भैया, एगो वोनी में कौन तमाशा भइल सरना में भाय। हाँ, और ब्राजील में का भइल है, हम सोचित लोग के गो हॉट वन तरी नाचे नाचे वाला गाना तो हम तरी सुनाई दी। और वो कहाँ हम रखी हैं, वही तो ओ यहाँ रेगी, एगो रेगी है फोन फन हिंदुस्तान है।

और एक हिंदुस्तानी रेगे सॉन्ग आपको हमने सुनाई ही दिया है हमारे मीठा मीठा जनता। तो प्रोग्राम में जुट गया है वो है गीता शिगुलाम, आपको हम हृदय से दिल से बहुत प्यार देते हैं। गीता जी आपको स्वागत भी हम करते हैं यहाँ दरहा शहर से जो सूरीनाम जिससे हमारा प्रोग्राम को फॉलो करते हैं हर हफ्ते की तरह। साथ स्नात आ गया है फिर से एक बार वो है अर्चना जी, अर्चना देवी का हरदाम, आपको भी हम बहुत प्यार देते हैं, स्वागत करती है प्रोग्राम में अर्चना। तो अर्चना और गीता साथ साथ मेरा अवत हीरा भी है, तो हम चलते हैं तुरंत तुरंत तुरंत चलते हैं। भैया आप भी बोले रही सूरीनाम देश में क्विबाने बड़ा ढेर आएंगे भाई, आप लोगों को जितने लोग सूरीनाम में हैं जैसे गीता जी है और वो लोग जो सुना वहां पर सुन रहे हैं तो बोले बड़ी क्विबान आएंगे लेकिन औरत भी आएंगे बड़ा ढेर भाई वहां पर। तो आदमी लोन हुआ पर ये मर्दाना है बाकी औरत भी आएंगे हुआ, तब बोले है औरत लोन हिया आए सब काम करे भैया, बाकी एक क्यूबान की औरत है। हाँ क्यूबान के औरत का करत रहा उजात रहा क्यूबा से मोई मोई लड़की हुआ से लावत रहा, बोले चल चल हम तो लोग के हुआ कांतोरों में काम देवे मोई मोई न कोई फिर भी कर करे पूरी लगाई के लिपस्टिक लगाई के चल तो लोग के हम बहुत मीठा मीठा काम कर मजा लड़कियन के औरतिया लेके आवे नारे मौसी, बस लड़कियन के ई पासपोर्ट वाले लेवे और ले जाए के बैठा देवे भैया होटल में ना जा हम लोग जाले फकान से सूते क्लब में भैया नाइट क्लब में हॉसल करवाए भैया सेक्सुअल का अन काम करवावे है और पैसों ना देवे है, बोले जोन पैसों तो क्या भर के मंगेली पहले वो सब चीजों भर में और वो का बोले पासपोर्ट तो ले लीज की कहीं तू जाए ना पाइए इंतमी देर करे भैया और ना खाली परमारी बहू में छौड़ियन के ले जाए के नाइट किलो पुआ में धल्ले रहा अर्चना बेना लंत में जहाँ सोना खोदा है भैया सुन ली बाटी हम तो ना गई ली है, बोले हुआ पे भी सबन के नाइट किलो भय छौड़ियन के ले जाए भैया हुआ पे बैठावे है वन कौन सी आदमी लोन अपन घरे औरत छोड़ थोड़ जा बेना लंत में काम करे औरत ना है भैया तो वही सबके संग है अपन मनोरंजन करे है। और बोले उस सबके भरियो तो सोना से भरियो जो सोनवा खोजियो ना एक टुक्का की कितना पता ना तो के छाई छौड़ियन के भरे के तब तू ओकर संगे जइयो मार। अब बतिया ई है ओमा से एकार गो लड़कियन फरार हो गया हो जाए के अनखिप तक करी से तो सिपाही जाए के अब ऑन द सुक्रे बोले मेंशन सो मकल ना खाली को कहीं न स्मकल हो भैया हम बोले ला छौड़ी के स्मकल हो की बास लेकर सूरीनाम तक अभी फिनिश वेला के बांध कर रही फिनिश वेला अपन को कहीं न कि पठावे है खियाना खियाना से सूरीनाम एंड फिर सूरीनाम कोमर कोक इन नार यूरोपा दिस इज द रूट नामलिक फन कोकीन दैट हैव द ओवरहेड फन वेनेजुएला बकेन कमा, लेकिन जो छौड़िया मंगावत रहा सबके उ फरार रहा भैया ओकर नाम रोसाना भैया रोसाना रोसाना गुरा पेरेस अलियास दियाना पेल भागल्ला पेल भागल्ला फॉर फ्लुक्त रहा तो रोसाना के भैया गायाना में जाए के पकड़ान है। अब देखो चकल छौड़िया के जाए के सबन पकड़ी से गायाना में तो गायाना में जब पकड़ी से रोसाना के तो रोसाना के लीफर कनी से हनीस मनोरत लगे सूरीनाम में भैया ओके पठाई से सूरीनाम के सिपाही के सबन ऊपर हंदक करी से गायाना के अथॉरिटी तब यहाँ के पीछे ओके काबल ऑफ स्पोरिंग पे कर ले रहा अभी पकड़ाई गए है हमारा रोसाना। तो अब

का बोले हे हिया श्री नाम देश में चकलस करवावत रहा। तो ये बात है हमारी जनता। तो शांता अवतार भी आ गया है। तो शांता जी आपको स्वागत करते इस ओपन क्लास खनूर फ्रॉम मई मेंशन इन श्री नाम। एंड हेल लाइक दैट यू फंदा ऑफ मेन ऑफ मेन फेसबुक ऑनलाइन बैंड। शांता जी आपको हम भी स्वागत करते हैं शांता अवतार। तो जनता हम चलते हैं और आगे के बारे में। सूरीनाम ही देश में हम सोचिल हम है, लेकिन हम बोली तरी बैतलान के बतिया भी तो लोग के हम बता दे भैया हम जाएला तरी इंग्लैंड की ओर। एक हम भी चनार इंग्लैंड ब्रिट्स ब्रिट्स तो जाने भैया जो आदमी गुजर जा परिवार में तो ओकर राखी मिले हैं और ओकर राखी कुछ दिन अगोरे के परे है। राखी कुरुच अगोरे के परे सूरीनाम देश में जे जइयो के मनासी और पे तो हुआ पे तो बिहान भर जइयो पर राखी बिटोड़ के जइए सरवाई सके है या वैखनासी में। लेकिन यहाँ नीदरलैंड में या यूरोपा में राखी डायरेक्ट ना पइयो ये मुतफ वक्त एंड दाम पास करेख माँ बातचीत ई चीज हो रहा है। ये बात हो रहा है इंग्लैंड के बारे में। तो एगो ऑंडर नेमर रहा फर्स्ट ऑंडर नेमर के बातचीत है भैया। ई का कर ले रहा इधर के माल उधर करत रहा और उधर के माल इधर करत रहा। हाँ ई दूसर के राखी दूसर के मैया के राखी दे दे इस दूसर जात के और बप्पा के राखी दे दे इस दूसर जात के और सब कोई राखी ले ली अपन घर में। राखी चलो जान पइयो कि हमार भाई के राखी के हमार माई के राखी केकर राखी है। राखी ले ले आदमी अपन घर में सब धरे रहा स्वागत करत रहा राखी के। लेकिन वो मौत यानी कि ओकर ओकर लाइक के राखी बोले ला दी अश्वार्थ के और वो आस जोन रहा मीन से और ओवरलीडन के आदमी लोग के फैमिली है वो आस इतना मोई धरत रहा। लेकिन जो अंदर नेमर रहा ब्रिज एट फर्स्ट अंदर नेमर रहा वो जितना राखी रहा सब उल्टा पुल्टा कर दे रहा भैया है विसल द आस फॉर ओवरलीडन द बखरूफ सब्स लेखामन नीत एस्ताल दो नाची फना बस्तांदन भैया। चोरी का जो नदमी दोनेर करत रहा ओहू चोरा लेवत रहा भैया एगो आत्म

3000 bewijs stukken beslag samen kari se 12000 documenten versamel kari se 800 getuigen verklaar kari se ga hoofdinspecteur jo raha au bolega 300 आदमी के स्लाखर करी से मार इन वर्कलक है बोले और ढेर आदमी की स्लाख ऑफर करी से एगो कंप्लीट खाओस इंग्लैंड में भैले भैया मद कने में फोर्स तेल जिकर जिकर धीर बार मरल है एंड एंड खाए शुमल में द आस वन यो धीर बार जब तू तोर पलवार के आ से द बीच की इफ हमार पलवार के आ से ओके तू जइयो ना ओके तू जइए सिरवावे पानी में जइयो ओके तू विनती भाव करियो पूजा करियो अपस्काइट लियो एंड ब्लैक दैट की वो कोनो घोड़ा बिलार कुत्ता के भैया दिस इज दिस कान टॉक नी दिस ये तो मेट मेंसेस गफूल त ई भैया के जहल मिलल है और जहल के तरह मिलल है मिला 20 बरिस के 20 jaar zelf straf op IJs in Engeland mee. En die man is zelf namelijk 48 jaar. Dus als ik 48 en 20 doet, bij elkaar doet, dan is het behoorlijk hoog, mensen. Top, oe, bichara kan in Nikarpai. Je helse kina, maar toen jij goed gedraagt met me 10 kwartje. En Nikarke bhagja, wie weet dat. Maar hamare kaam hai batane ko, ki aas kitra shumal bhail hai. Ik had dit ook een keertje gelezen. Maar dat was ook in een ander land, mensen. Dat was in een ander land. Aha. To, hamare janta, ye sab baat hai. Want dan ben je overmacht, toen aan jij ze keer. का हुए और का ना हुए है पॉलिसी खाओस पॉलिसी ग्रेप इन जानो डोमिनी स्ट्रांग सुरिनाम में जे जे है डोमिनी स्ट्रांग सबन रस्तुआ बनावे भैया हाँ डोमिनी स्ट्रांग सबन बनावे है खोद खाद के से बनावे है सिपाही हुआ फरकेस रही खस करे लेकिन आदमी लोन तू जाने हुआ बात ना सुने है ते कर बारे में सिपाही लोन बोले फरकेस ऑफ स्टॉपिंग दिस सिंस ऑफ फ्लोइट फॉर द डोमिनी स्ट्रांग सेन ऑनस्टान स्कोटो लोन हुआ भैया एक्स्ट्रा मात्रा ही हल करी से तो जे तुलो सुरिनाम देश में बाटो चलियो भैया अल्फास ना चलियो स्कोटो का अनवेशक में करियो नहीं हुआ बूटू पावे में खेलवाड़ ना करियो और जब पैसा है भैया बूटू भर के तो खेलवाड़ करो मन खाती वे met andermans lieve spelen want die andere probeert goed te rijden maar jij als jij verkeers rijdt dan heb je die probleem to chanta ye sab baat aap log ke aage hum rakh diya hai 16 baris ke तू कितने बरिस के हम 16 बरिस के जब तू 16 तम गनवा तुलो जानो ना है बाकी हिया बातचीत कुछ और है मिला 16 यार भैया 5 ताल ब्रोफिंग फन ब्रोफिस 16 बरिस के लड़कन जे अबे जाए स्कूल बाप रे बाप देखो खाली ब्रोमफी स्कूटर चोरी कैसे सरनाम में 16 बरिस के लंदन भैया नाम है सबके छोटी छोटी निकल कहाँ कहाँ पढ़ी और इस सबके इसको उदू पकड़ के सबके सुताई से दोस्तों यही बताएला कि ब्रोमफीज भी बड़ा जोर सबन चोरी करे है सूरी नाम देश में हमारे प्यारे प्यारे जनता बोले जॉनी तू ना बताले सेलेंस की तोरिया कैसे है और रुसलान के तोरिया कैसे है रुसलान मतलब ना सुरिनाम वाला रुसलान ये हैगा दिसवा रुसलान हाँ जोन और लखवा हुए है उक्रेन से उल्टा को चोर कोतवाल के अब उक्रेन उल्टे सिर रुसलान के दागे भैया रुसलान बनाई से लंबा लंबा ड्रोन 2000 किलोमीटर फैब्रिक में बनाई से भाई और जितना रफीनाद रही है रफीनाद रही है और काबले रुसलान में सबके दाग दाग प्लाटा करे है सेलेंस्की उक्रेन के साथे साथ बोटियन भी दागे शुरू करी सेगा काबले उक्रेन अब जोन Rusland, een van de grootste land waarvoor de exporteren van gas en olie ook er dit me op deel na midden het miljoen lamba lamba rij me kara hoi ke oud deel jij ke lewe heb hij to hier betawe Oekraïne heeft gemunt op Merkel doel in Rusland bole het bedrijf wil bezoek ke ego barka dukaan bhi raha jon khali wapen bechatra online u dukaniyo drone jij

dag ke platakar is Oekraïne ke afgelopen paar dagen met een webwinkel waar je distributiecentra gaan. Ook is het dag ke Oekraïne ook ke platakar die zei hamare janta. Dus Oekraïne bari aage ja Russen vinden Nederlandse kruisraket die een hengeloze bedrijf maakt. Dek hier heb je betaai gaye hai hengelo me hengelo tulon jane Nederland me hai aur betaai gaye hai ga hier pe bane kruisraketten in Rusland zijn wraakstukken van Nederlandse kruisraketten in handen gekomen van Russische militairen. Het zou gaan om Ruta Blok 1 die bedacht en geproduceerd is in Hengelo. Wat is dit voor bedrijf en hoeverre zijn ze betrokken bij de oorlog in Oekraïne? De kruisraketten Nederland banawe he Hengelo mee. Maar hoe ook er wraakpijsjes hebben Rusland mee. Op Rusland chakkar mee Hengelo. Hij kaha Hengelo te hamlo jane lag. Ja, dat is de grens van Duitsland, maar het is in Nederland, in Hengelo. Dus laten we hopen dat wij de andere kruisraketten niet van Rusland hier in Nederland krijgen. Dus Hamara Pua, ja, hey, Piari. Aur Hamara Pua, Damian TV, Aken, Hamara programma. Aur Jude Gaya, hey, de Pua, die Apko Pian se Bahut Swagate Karte, hey. यहां बताए भैया खवापन द वोनिंग अरे भैया वापन सबन वापन लेके गल सूरीनाम देश में रोफ करे पुआ हां गैल रोफ करे अजय रोफ करे लगल हुआं पे रा बीरा भैया लगल चिल्लाए इतना चिल्लान जनता हुआ के बीरा जग गए की कौन जी भैया की चोर के कान बहरा चोर अपन हक्की पक्की दबाई के और भगल है कुछ ले जाए भी ना पाई से चोरन भैया चोरन कुछ ना ले जाए पाई है यानी कि उसे पिंडम डराई गए है एक घंटा हो चुका है दोस्तों इसी प्रोग्राम से अब हम समाप्त करें इसी गीत से जितने लोग हमारा फेसबुक पे है आप सबको बहुत बहुत प्यार देते हैं प्यारी मिला अवत हीरा गीता बिहारी गीत संता अवतार सुनील दत्त गजरी किसी के मिस कर दे भैया नाराजी न मनियो गीता समुज कुमार शामी चित्रा अवतार धर्मेंद्र इसरी टोनी इसरी और कितने लोग हैं दोस्तों जिसको हमने यहाँ पर हबड़ा कर दिया है और अर्चना देविका हनुमान और रॉय काली रजेश यानी कि बुद्धू भैया सबके बहुत बहुत प्यार यहाँ से नमस्कार आने वाला शुक्रवार को हमारा तुम्हारा मुलाकात हो

दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहोन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे, आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 MHz पर और नहीं कनाल 8 पर, और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं, हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में, पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो है www.fahon.fm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत्वासलमो ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: और कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गाया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है, और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है, कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम, कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो, और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज़ कह सकते हैं दोस्तों, कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है, और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों, उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए,
1: बचाने तू मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना,
2: ट्रेन 6 घंटे में यहाँ पे।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिन नौ यानी कि जुबेन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी। दोस्तों जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपके शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल है तो दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव मैं प्रेम की दीवाना हूँ एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

और संजना आई लव यू, संजना आई लव यू हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनात का और काश चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए, वह कितना भी बदल जाए, मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता, तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है। और सिद्धार्थ मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, नेहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

नमः हरिओम। एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर संभ्रम प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी भी सलाम को और आप सभी को भी हरिओम हरिबोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णादत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से जानते हैं। रविवार का शाम का प्रोग्राम साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ साथियों, ये यश उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। आप रिव्यू जी साल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। अब हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी संडे हैप्पी हैप्पी वीकेंड पेश है मैं थील फील प्लेजियर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स टाइडस कंटोर उर कंटोर 07362247 और स्टूडियो का तार का नंबर है 07362247। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं साथियों। एनी तो फरखेत है उनसे क्वालिटी इस आते तो गारंटी एंड नेचुरल नेचुरल नेचुरल फूट से ऑलवेज लेकर दर बे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो पहले आप श्रोताओं ने कति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे जो खास करके रोसिता बहन जी आप श्रोताओं के समक्ष पेश की। जिस तौर तरीके से रोसिता बहन सदियों से आप श्रोताओं को सेवा करती आ रही है, यह उम्मीद है कि उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद रोसिता बहन जी और आपको भी हमारे फुल टीम की तरफ से एक हैप्पी हैप्पी वीकेंड। आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। विवाह संस्कार हो सकता है तो आजकल तो इतवार के भी रविवार के भी विवाह हुए हैं, लेकिन अगर कल हुआ होगा तो आज कंगन भी छूट चुका होगा ना। जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। अब परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। आपके घर पे एक दुख का फिड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए। यानी तो फिर खेत है जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना और हो सके तो थोड़ा बहुत तुम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना। फनार्थ भी तर्स का कामयाब हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां एंड फॉर ऑल खास दौर ब्रो और सीस। और हो सकता है कि आप परसों या कल आज कामयाब नहीं हुए हो तो मौर्ख स्वेर अंदाज है, चिंता की कोई बात नहीं है। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ ट्रस्ट थोड़ा और जोर तोर से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना बंधु, तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी आपके कदमों को जल्द जल्द से दौड़ दौड़ कर आकर
चूम सकते हैं। देखो मेहनत तो है, दौलत का यारी है वो तो ओवरऑल खलियर थे। नेवर गिव अप ब्रदर सिस्टर, सो लवली लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बेडंक्ट फॉर एट लिस्टरन। Deze prijs weet maar een full team die er zich zo zwaagt. Een fijne vakantie, geniet ervan. Blijf luisteren naar Fahon Industani Radio. Je gaat het zeker leuk vinden en dat menen we ook. Over hoeveel tijd, ja, deze kochortje bij deze jatra per jaar. Hij heet al, aapko bij maar een full team die er zich zo jatra, fijne vakantie. Tamam leuk, sunte hij werd links en rechts altijd verteld hoe leuk ze het vinden dat we ons ook op hun vakantieadressen mogen luisteren. Toa bisonium leuk op uw vakantieadres, mogelijk hè, internet kan leren doaren op uw tablet, smartphone of laptop. Zo blijft u van alles op de hoogte van uw favoriete radiostation en dat is natuurlijk Hamar Den Haag Sherkar, one and the only Fahon Hindustani Radio, 24 hours at your service, me gudu. साथियों प्रोग्राम का शुरुआत मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एड फिल्म ललकार 1987 कंपोज बाय डेविड कल्याणजी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या छालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा ना, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा या कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए आप लोग गो से तो यहाँ से हम लोग सदियों से कहते आ रहे हैं और सदा कहते ही रहेंगे ना कि हैव टू नाश्ता ऑल टेज लीव, हम इंसान है और सभी को पेड़ पालो पक्षों धीर इधर ही मुतो लीफ है दिफ्ट अलर होस्ट परसों लिखे कृष्णा जी खेखते हैं। तो इसलिए हम लोग आप सभी से सदियों से यही कहते आ रहे हैं रेडियो पर और सदा कहते ही रहेंगे कि हैप टू नास्ट आउट एज लीफ है, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है साथियों, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम हमारे सरनामी संगीत का, कुछ गाने सरनामी देश का आर्टिस्ट का और कुछ हमारे हॉलैंड देश के आर्टिस्ट फिलिंग नतीलक में सूरीनाम वाट वाज सेड ए नतीलक अपना देश का संगीत है यारो। और द लास्ट यूच फन सीफ टॉप आह अलेम आर न्यू न्यू नंबर्स फन है द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। बीच में कुछ ज्ञान के बातें है, कुछ शायरी भी है। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा साथियों। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। रफी साहब

लो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, रफी साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। साथियों, आज का इस हसीन रविवार का शाम का प्रोग्राम जो आप सभी के नाम है, मैं शुरुआत करने वाला हूँ हमारे सुरीनाम देश का एक जबरदस्त कलाकार के आवाज के जरिए। मौसम भी हसीन है, आप सभी भी मेरा साथ दे रहे हैं, तो एक से एक नगमे चुन चुन कर लाया हूँ हमारे कुछ सुरीनाम से आर्टिस्ट है और कुछ हॉलैंड से आर्टिस्ट है, नतीजलक ओक अफ्रिकस्टम्ड uit Suriname, ook een paar die dagelijks met ons omgaan. Dan bedoel ik Pakistanse zangers, zangeressen, ook uit India, die dagelijks contact met ons hebben. To dosto, zara dil ko thaam lijiye, hamare Surinam desh ka ek jabardast kalakar, international kalakar hai, kafi baar yahan desh mein aaya hai, Holland desh mein apna shows diya hai, aur program ke zariye hum logo ko इतने एंटरटेन किए हैं। एक जबरदस्त कलाकार बोर इन एन म्यूजिकल फैमिली उदित राम, और मैं तो अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि इस परिवार में हमारा संगीत का शुरुआत भी हुआ। मिलकर सुनते हैं उस्तादों का उस्ताद, द ग्रेट सिंगर फ्रॉम सुरीनाम, द वन एंड ओनली मास्टरो रॉबी उदित राम जी का ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान। जरा अल्फाज पे जरूर ध्यान देना साथियों, सारी दुनिया से नाता।

शाबाश शाबाश शाबाश, जबरदस्त कलाकार, इंटरनेशनल कलाकार हमारे सूरीनाम देश का स्वर्गीय उस्ताद रॉबी उदित राम जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये ओपनिंग सिलेक्शन आज का इस दिन शाम का प्रोग्राम में हुआ। साथियों, स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो देहरादून का तापमान तकरीबन 24 और 25 के दरमियान था। सुबह तो खूब जोर तोर से धूप घाम निकला था, लेकिन अभी शाम को तो एकदम छाई सी छाई छा गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, गर्मी है ना, तो आप ये अति सुंदर बयान को सुनिए, बिल्कुल नया नया निकाला है हमारे सरकार देश का नौजवान कलाकार जो ईसाइत बेतलांस दूर पे है, द ग्रेट सिंगर फ्रॉम हॉलैंड शिवम राजाराम जी। एक मैशेप है छोटा वाला, कैसे तूता और सैया से बिछुड़ मिक्स।

शाबाश नौजवान कलाकार हमारे डेन हाग शेर हॉलैंडीज का डिग्रे शिवम राजाराम। हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, रविवार का शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 9 अगस्त 2020 का ये हसीन शाम का प्रोग्राम जो आप श्रोताओं के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाग शेर से, और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। अगला बयान आज का इस सरनामी संगीत का प्रोग्राम में एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का उखबोर इन हेल मिशकाल फैमिली से। ग्रोट फादर वॉज एन ग्रोट टोनील एक्टर एंड एन ग्रोट सांगर एंड ओक एन हेल बकेंडे कपर एट सूरीनाम दिस एन बिड्राइव इन होटल क्रासनापोल्स्की हाथ एंड यू वेट इट 3-in-1। और उन्हीं का नवासा है सन क्लाइन सोन फन चेदी भान। मैं बात कर रहा हूँ उस तारो का उस तात द यंग टाइगर फ्रॉम सूरीनाम क्रिश्वम चेदी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग आ जा रही उस जन्म।

शाबाश शाबाश जबरदस्त कलाकार, हमारे सुरीनाम देश का नौजवान कलाकार कृष्णम छेदी जी के ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुन रहे थे। घड़ी की तरफ देखता हूँ साथियों, तो 2 मिनट बाकी है 5:30 बजने में और आप चुन है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। साप्ताहिक प्रोग्राम हमारे बैठक गाना सरनामी संगीत का अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली है uit de jaren 70, 80, 90. U kunt gerust zeggen bij de Ganaka ik maha maha ustadin Srimati Manraji Lachmanji ko laate hai unike yaad mein ek ye ho jaye bij de Gana chutney option best by the great great great Manraji Lachmanji। रिश्ते में तो मेरा फुआ लगती थी क्योंकि ये मेरा सगे मौसा जो एक महान गायक था सूरीनाम देश में कितने प्राइसेस जीता था और आई एम पेंथ का लीड सिंगर गिड़ गिड़ी महाराज पंडित स्वामी प्रसाद साधु के बारे में आप तो सुन चुके, उन्हीं के बहन हैं थी ये। मिलके सुनते एक जबरदस्त सॉन्ग, रेडी, जरा ठुमका भी लगाइए इस पे।

शाबाश शाबाश शाबाश जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश हॉलैंड देश का बैठक गाना का उस्तादिन दियार 70 80 90 श्रीमती मनरा जी लक्ष्मण जी। मिनट गुजर चुका है साथियों, 5:30 बजकर तो कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ पढ़े लिखे लोगों, कुछ विद्वानों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने जिंदगी और मौत, लीफ एंड दौत के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं। ये आशा उम्मीद लेकर के इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे हमेशा की तरह, तो जरा गौर फरमाए। अर्ज किया है हम लोगों का अपना श्री बुद्ध भगवान जी, श्री बुद्धा जी ने कहा है मृत्यु के बारे में साथियों और दर्द के बारे में कि अलवीसन सेंट बंग फॉर पेन एंड फ्रीज इन द दूत Verplaats u in hun situatie en laat hen met rust. Spinoza ji mrityu ke bare mein aur ki een vrij mens denkt aan niets minder dan aan de dood. Friedrich van Lugau ne bhi kaha hai mrityu ke bare mein aur ki een vet zwijn en een gierig aard worden eerst na hun dood wat waard. हम लोगों का अपना महाज्ञानी श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कुछ कहा है मृत्यु और दिन के बारे में, यारो कि द डोट इज नीट हैट डोफन फन हैट लिख्ट मार हैट आउटब्लासन फन द लैंप ओमदैट द डग इज आंगेब्रोकन। Confucius, Chinese filosoof uit de oudheid, kaha hai mrityu ke bare mein saathiyo ki, wij kennen het leven niet. Hoe kunnen wij de dood dan kennen? Horatius ne kaha hai mrityu aur jeevan ke bare mein saathiyo ki, beschouw elke dag die voor u aanbreekt als de laatste. Het uur waarop gij niet gehoopt hebt, zal u dan een welkome verrassing zijn. Seneca, Italiaans filosoof uit de middeleeuwen, kaha hai mrityu aur jeevan gyan ke bare mein aro ki, het hele leven is nodig om te leren leven en te leren sterven. Pascal, natuurkundige uit Frankrijk, kaha hai mrityu aur onwetendheid ke bare mein aro ki, daar de mensen geen geneesmiddel wisten tegen de dood, de ellende en de onwetendheid en toch gelukkig wilden zijn, hebben zij bedacht er maar niet aan te denken. Moore ne kaha hai bhi mrityu aur bimari ke bare mein yaro ki, indien er geen dokters waren, zouden we minder ziektes hebben, maar eerder doodgaan. Klopt. En de laatste van vanmiddag kaha hai Sir Thomas Brown. Aur ye kaha hai kuch मृत्यु, कुछ तंदुरुस्ती, कुछ भगवान, कुछ जीवन और कुछ बीमारियों के बारे में। सर थॉमस ब्राउन ने कहा है साथियों, मेंसन दी नीट फर्दर दान द ओपरफ्लक्ट कैगन डेंकन दैट गेजोंडहेड एगन आन हेट लीवन इज एन रिख्टन फरवाइटन टॉट हिन गेस्टेल अल्स ज़ीक ज़ैन मार इक दी वेट aan hoe uiterst fijne draden dat weefsel hangt, verwonder mij dat we niet altijd ziek zijn. En als ik de duizenden poorten zie die tot de dood leiden, dank ik God dat wij maar één keer kunnen sterven. साथियों, अभी आप कुछ ज्ञान के बातें सुन रहे थे। यह आशा उम्मीद लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों
सुन सुन कर कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखते ही रहेंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ, एक और जबरदस्त नौजवान कलाकार हमारे सुरिनामडिस हॉलैंडिस का आप सुनिए, उनका बिल्कुल नया सॉन्ग है, कुछ महीने हुए है निकाला हुआ। तो ये तो बढ़ता जा रहा है अपने बालापन में, कितना मशहूर हो गया देवानंद ओली, माएस्ट्रो सुजल उमराव, न्यू न्यू न्यू।

दम दमा दम, क्या बात है। नौजवान कलाकार हमारे सुरीनाम देश ऑल इंडीज का मशहूर गायक मैस्त्रो सुजल उमराव जी का बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुन रहे थे। 17 मिनट रह गया छे बजने में साथियों, और आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर रविवार का शाम का प्रोग्राम साप्ताहिक सरनामी संगीत का आप सुन रहे हैं। अगला बयान जरा दिल को थाम लीजिए, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन हमारे द लायन ऑफ बैठक गाना देनाशर हॉलैंडीज का उस्ताद का उस्ताद देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग। आजकल तो नया मशीनियां चलावे है और बौयार एंड मेट इन ट्रिनिदाद कहता है, बोले हमार मशीनियां। मिलके सुनते हैं जबरदस्त सॉन्ग कंपोज एंड रिटन अरेंज बाय उस्ताद का उस्ताद श्री देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी। एंजॉय, क्योंकि अपने लोग हैं जिसपे में गर्व है और होना भी चाहिए।

वंश उस तरु का स्थान लायन ऑफ बैठ गाना फ्रॉम होलैंड द ग्रेट द विंडर सिंह सिवना जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग अमाय रेवन यो वाजी त्रावाजी मेक इन Trinidad. Blessings, blessings, my boy. Keep up the great and the good work. So, so, lobilum and blessings. Agla bayan mashur gane wali hamare Rotterdam shehar se the Chutney Queen ek sohar in Chutney style mashur gane wali Ashni Mata Din and all.

Als je de chutney queen from Rotterdam, Ashley Matadindike Beautiful Avans mee, je het is een der gouden oude apersonerete. Maak niet druk, ja, hij staat hier ook twee bezinnen mee. Toen had je bijna een diaai, hamare Sarenami Sangeet kaap, ik aangrijp bij aansluitingen. Er was sunane wala hai also new. From the king of Baita Gana, Ustadu ka Ustad Shri Sandeep Batlu ji ka ye bilkul naya song. A King's Legacy, volume 1 se nikala hoon ye ti sundar bayan sexy selfie jo kuch mahine hue release hua hai. Enjoy kijiye the great, great singer from Holland. Ji se hum सदियों से बहुत ही मानते जानते हैं और कुछ साल हुए हैं ना, जिसे लोग ने यहाँ के कुछ महान महान संगीतकारों ने, ज्ञानियों ने इसे वो ताज जाने जो क्रोन होता है द किंग ऑफ बैठक गाना का पहना दिया है. सुत वेलवार थोर मिल्क सुनते हैं सेक्सी सेल्फी बाय संदीप बदलू.

कौन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 9 augustus 2026 zondagavond kan je Suriname Sangeet Dusra Adhyay aap sunye. पांच मिनट वेट हो चुका है, 6:06 पूरी टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एंड नैचुरली वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोशल लवी लवी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। एंड नैचुरली बदंत फॉर हेट लुस्ट्रन जो भी रेडियो का काम होना खास फरमाइश हो, इस तिहारे जरूरी खबरें देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दाम में। हम लोग आपका जो भी रेडियो का संदेश होना मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप कहेंगे बंद हो उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। जो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हर देश भर में नहीं मिलेगा साथियों, तो आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलटेनेंस कंट्रोल यूरो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंट्रोल 07-3562-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-3062-2077। जो भी रेडियो का काम होना देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो इवेंट फ्रॉम हार्ट वेलकम होर। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना साथियों, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग है ना, और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और हो सके तो हम लोगों के बारे में ज़रा और जोर तोर से बातें शातें करते रहना, और हो सके तो थोड़ा ढंढोड़ा भी पीट देना ना अनस्कैपियो बोफनो बदूरे। तो गुजारिश बीती निवेदन किया जा रहा है आप सभी से कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और रोको भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सवाल से वेट है वो ओक उनस एक करा ओक टीम फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो नतीजलक वह हेल फील ओमरूपर्स एंड ओमरूपस्टर्स ओक मेसिंग। Volg ons op de sociale media en natuurlijk onze collega's op de radio. Dan hoort u zeer zeker binnenkort waar u voor uw live gaan optreden. Want door het samenloop te oefenen. Karar he he, karwar he he, een lokale leader. En aap Semika Janamana, en onze saati, een lokale कराओके टीम का सभापति लीडर उस्ताद धवन डोरी मास्टर चंद्रसेन गंगा, तो जरूर सुनते रहना। और आप भी जल्द से जल्द अगर आप मेंबर बने तो आप भी हम लोगों का जो ये परिवार है छोटा सा मोटा सा बनते जा रहा है, आप भी आकर उसमें शामिल हो सकते हैं। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार tijdens kantoor uren van maandag tot vrijdag op 07-365-2247. Dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider, the one and only maestro Johnny Number One. Wabi faun Hindustani Radio kan member bene, ou roko bhi benai. Ook u bent van harte welkom hoor. के मुताबिक एक ही दम लेकर बढ़ते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। दूसरा अध्याय हमारे सरनामी संगीत का में स्थल सूरीनाम इंडियन पॉप म्यूजिक फ्रॉम सूरीनाम एंड हॉलैंड। एक बहुत ही जाना और पहचाना हुआ आवाज आप सुनिए, हम लोग का अपना अनाउंसर साथ ही द वन एंड ओनली उस्ताद का उस्ताद श्रीमान अनिल जगरूप जी के, यानी अनिल जगरूप श्रीमान अनिल सरजू के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनिए। उनका साथ दे रहा है जबरदस्त गायक हमारे ऑन इंडिया का श्री इरविन अब्दुल।
Rearrangement by music director, the one and only maestro Ashok Ajodhya in Hawaome Mashup. Enjoy the music, Satyo.

wonderful song, onze eigen omroeper van Fahon Hindustani Radio, the one and only Anil Sarju, together with Erwin Abdul. Rearrangement by Maestro Ashok Ajodhya. 15 मिनट गुजरने वाला है छे बचकर साथियों. अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है और लाते हैं इस बार एम्स्टरडेम शहर से उमर वाहिद हुसैन जी का. ये बिल्कुल कुछ दिन हुआ है निकला है, लेकिन नीट सो पॉपुलर मार एन हेफ्टिग नंबर और फन उमर म्यूजिक एक्सक्लूसिव महंगा.

0: royale familie, de one and only maestro, Umar Wahid Hussein, die kan je Babuti George's de mazedar song aan zijn rete. अठारह मिनट गुजर चुका है छे बजकर साथियों और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हमारे सरनामी संगीत का और दूसरा अध्याय में मिस्ताओ कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक अगला बयान आप सुनिए एक जबरदस्त सॉन्ग है एवरग्रीन सॉन्ग vele malen nagespeeld op alle soorten stijlen, beter chutney, hip-hop, R&B. En een hele slimme jongeman heeft dit al met AI-technology, dus kunstmatige intelligentie, ook dit nummer weer heel mooi gecomponeerd en op YouTube gezet natuurlijk. En hij noemt het Shole Oxygen Mix, DJ Aira का बनाया हुआ ये इतनी सुंदर धुन है बना था लेकिन इन न्यू यशिया ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे AI टेक्नोलॉजी
1: Tonight we celebrate friendship and joy. Raise your hands, feel the beat. Feel the moment. Let's make this festival brighter together. DJ Aira is here.

What a beautiful mix, Satyo. और ये भी कुंस्मातक इंटेलिजेंसी के जरिए AI जिसे लोग कहते हैं ओक डिजाइन एनालिसिस क्रिएट डोर कंप्यूटर्स। 5 मिनट बाकी है 6:30 बजने में। अगला बयान है कोई जबरदस्त सॉन्ग है ही लावे कर ही हुआ फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मेसी द स्टार्स। बिल्कुल नया सॉन्ग है तू मंथ्स अगो रिलीज किया गया और काफी लोगों ने देखा है पसंद किया है और नगमा का बोल है रूपाद्री रोहित छेरी के ब्यूटीफुल आवाज में आप एंजॉय कीजिए हिलावे कर ही हुआ।

एकदम भाई शाबाश शाबाश शाबाश रूपाद्री फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मासी द स्टार्स रूपा हिलावे कर ही युवा मशहूर गायक फ्रॉम द बैंड द स्टार्स का लीड सिंगर रोहित छेरी जी का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग जो रिलीज किया गया था इन मई। हिंदुस्तानी रेडियो पे आप जो है जोर तोर से आप साप्ताहिक प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारे सूरीनाम और हॉलैंड का म्यूजिक सरनामी संगीत। एक मिनट गुजर चुका है साथियों 6:30 तो वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर के चाहने वालों के लिए न्यू यश देते के। जी ने और अर्ज क्या है कौन है जिसमें कमी नहीं होती, कौन है दुनिया में जिसमें कोई कमी नहीं होती, आसमान के पास भी तो जमीन नहीं होती, तो अपने कमियों पर आप शर्मिंदा मत होना। इधर ही खबरी के साथियों पूछता है मोहब्बत से कि क्यों रो रहे हो मुद्दत से, क्या इश्क हो गया था शिद्दत से, मुझे तजुर्बा है, मुझे तो तजुर्बा है, तभी कहता हूं मौत अच्छी है मोहब्बत से। एक बात बोलूं, हर कोई सो जाता है अपने कल के लिए, मगर ये नहीं सोचते कि आज जिसका दिल दुखाया है वो सोया भी होगा या नहीं। थोड़ी हिम्मत रख, अपनी बात रख, कोई ना सुने तो ऊंची अपनी आवाज भी रख। ये खुद गर्जों की दुनिया है साथियों, ये तो खुद गर्जों की दुनिया है साथियों, सबको अपनी पड़ी है, तेरा कोई नहीं रखेगा, तेरा कोई नहीं रखेगा, तो खुद अपना ख्याल रख। गुलाब का कोई भी रंग रख लिया जाए, मगर पहचाना खुशबू से ही जाता है ना, गुलाब लाल हो पीला हो या ग्रीन हो, नहीं उसके तो खुशबू से पहचाना जाता है ना। इंसान भी वैसे ही है बंधु, इसका कोई भी रंग हो रूप हो जात हो, मगर पहचाना अपने अखलाक से ही जाता है, क्योंकि कर्म से बदूत है। दोस्त हाउडिंग एटीट्यूड।

English, in English we say move on, love someone else. But in shayari we say jo ek baar dil mein bas jaye uska khayal mitaya nahi jata. Jo saanson mein mehak jaye use bhulaya nahi jata. Log kehte hai mohabbat dobara bhi ho jati hai. पर जो दोबारा हो जाए उसे मोहब्बत कहाँ नहीं जाता। तो ये था कुछ शेर्स हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। साथियों, तो आप ये अति सुंदर बयान को सुनिए जो मैं स्टीफन 20 जुलाई को साम मेथ म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर मैस्त्रो अशोक अयोध्या के साथ मिलकर बनाया और रिलीज किया। और ये भी महान फनकार द ग्रेट दादा हेमंत कुमार के याद में सुरेंद्र भगवान दीन यानी कि मेरे ही आवाज में आप सुनिए या दिल के सुनो दुनिया वालों। रे अरेंजमेंट बाय मैस्त्रो अशोक अयोध्या।

अरेंज बाय मैस्ट्रो अशोक अयोध्या और आवाज था मेरा ही सुरेंद्र भगवान दीन दारा हेमंत कुमार के याद में। 19 मिनट बाकी है साथियों, साथ बजने में एक और जबरदस्त सॉन्ग आप सुनिए, ऑल्सो क्रिएटेड बाय AI टेक्नोलॉजी कुंस्मातिक इंटेलिजेंस door een zekere Anil Ramdien, en die heeft even aan onze lieve stad Paramaribo gedacht, waar hij recent op bezoek was, en heeft dan dit gecreëerd. Alles is door computer gemaakt, ook de stemmen, alles. Indo-Caribbean Chutney Soca Celebration, Suriname Festival, Paramaribo Dancing.

0: आज उस्तादों का उस्ताद और बैठ गाना और संगीत यानी ऑल राउंड म्यूजिक का महा महा गुरु हमारे सूरीनाम देश का, जिस पे मैं नाम से गर्व है। काफ़ी बच्चे को काफ़ी दिनों से ये अपना संगीत का जो शिक्षा है सिखाते रहते हैं और इनका जो सिखाया हुआ कुछ बच्चों ने क्या क्या कमाल कर रहा है इस वक्त सूरीनाम देश में। थ्रॉट्स ऑफ भाई क्रिस राम खेलावन सैन और है ब्रेंट लेगेसी फंक्शन फादर ओक फोर्थ है। तो साथियों घड़ी की तरफ देखता हूँ तो 6 मिनट रह गया है 7 बजने में, तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो। और आप श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि बड़का भैया श्री योसेफ सेतु जी ने अभी अंदर आया है स्टूडियो में, और आप लोग तो मालूम है हमारे बात भाई चंद्रसेन गंगा और योसेफ भाई जी मिलकर आप सभी को सुनाने वाला है साप्ताहिक प्रोग्राम गीत और गजल गोद कार्यक्रम। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना साथियों, मजे लेते रहना। वन टेक लाइफ इट सेफ है, हैट लीव इट ड्यूर तो सो कॉर्ट है दिस खनी तरफान आफ्टर द ब्रेक, कहीं जाना मत।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten €400. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink. In het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

साउंड हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। नेगे ऑगस्टस सोमदागावंत का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। पहला अध्याय दूसरा अध्याय हमारे सरिनामी संगीत का आप सुन चुके हैं, तो अब आप तैयार हो जाइए कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को का सुनने के लिए। कुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं हूं कि एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। की तरफ देखता हूं तो पूरे सात का वक्त हो चुका है। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एन अतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सुसलो बिलो बियम ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एन अतिलक बदंत फॉर हेट लाइस्टरन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, थैंक अनफा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट सस्ते दाम सर्विस ग्रांट योर क्वालिटी स्टार्ट बाय ओम्स ऑफ द ईस्ट प्लांट्स। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करो अपने उसी तक फिर तक कंटोर का नंबर और स्टूडियो का तार का नंबर है अपने उसी तक ट्वेंटी पर आप तार करें फिर मंडे तक फ्राइडे टेनेंस कंटोर यूरन। जो भी रेडियो का काम हो ना, देंक अनफा हुन हिंदुस्तानी रेडियो, यू मैन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोग के बारे में चर्चा करते रहना यार और रेक्लाम बनाते रहना, इट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग है तब हम लोग भी रहेगा ना। बिंती नो खेलत फनफा हुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिंती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। और श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन हुए हैं या मेरा यार है वो एक कराओके टीम die opgeleid wordt door onze eerwaarde broeder en the one and the only Ostadoka Ostad maestro Chandrasen Gangaji, die zelf ook jaren in de muziek heeft gezeten, achter de drums, achter de microfoon en ook achter een saxofoon, dus allrounder. Aur to zarur hum logo ko follow karte rehna omroepers, social media's, dan ziet u of hoort u zeer zeker heel binnenkort waar we live voor u gaan optreden. En dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. Abhi Akar is chota sa mota sa jo Faun Hindustani Radio ka parivar bante ja rahe na, aap bhi aakar usme shamil ho sakte hai. इसके बारे में आप सभी जानकारी को प्राप्त करें बेल टेडेंस कंटोर यूर ओपनर सीक्रेटिक ड्रिफेंसेस्टर 2247। Dan wordt u direct door verbonden naar onze teamleider Don and Only Maestro Johnny Number One. तो आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। वरा के मुताबिक कुछ नए नगमे आप सुनिए। और अगर आर रहमान शाकिरा के साथ मिल जाए और वो भी दौर आई टेक्नोलॉजी, तो ये आप सुनने को पाते हैं। द डेजर्ट्स मीट्स द ओशियन एपिक लैटिन इंडियन सॉन्ग 2026 Shakira meet Rehman.

Desert meets the ocean when Shakira meet Ava Rahman with AI technology. क्या बात है, 10 मिनट व्यतीत हो चुका है, 7:07 साथियों, और आप चुन हैं आप ही का मनचाह रेडियो स्टेशन पर, हमारे जहां अक्षर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर, तबलाइस्त्रुफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाहुन FM.NL पर आप सुन सकते हो और चून हो सकते हैं, और आप मुझे अगर सुन रहे हैं तो चून हो। शाहीबा मशहूर गाने वाली जैसलीन रॉयल का गाया हुआ अति सुंदर बयान साथ दे रहा इस जमाने का मशहूर गायक स्टेबिन बेन। संगीत वो खुद कंपोज किया है ये नगमा को जैसलीन रॉयल, और साथ दिया है अरेंजर सिद्धार्थ अन भवर, गाने लिखे प्रिया शरया अन अदिया शर्मा। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम साहिबा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग साहिबा आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया, और ये भी जैस्लिन रॉयल के आवाज में साथ दे रहा था स्टेबिन बिन। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं, जुन जरा तुझे भुला दिया, ये सुनाने वाले हैं आप सभी को मशहूर गाने वाला इस जमाने का माएस्ट्रो शान, और साथ दे रही है उसका श्रुति पाठक, म्यूजिक बाय अभिजीत भगानी, अभिजीत वघानी होना चाहिए। मिलके सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल।

टूटी फूल सॉन्ग आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया। देखा जाए तो सुनाने वाला था आप सभी को द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार सानू, और साथ दे रही थी मशहूर गाने वाली आई यार 80-90 साधना सरगम, म्यूजिक था अन्नू मलिक जी का। और क्या डांस किया इस गाने पर महान कलाकार द ग्रेट आयुष्मान खुराना जी। 22 मिनट गुजर चुका है, 7 बजकर और बड़का भैया श्री चंद्रशयन गंगा भी उपस्थित हो गया है स्टूडियो में हमारे बात आप सभी को सेवा करने के लिए। तो जरूर इन दोनों का प्रोग्राम हमारे बात आप सुनते रहना। Vooral als jullie van oude liederen houden, kunt u graag ook een nummer ook aanvragen in hun programma, wat u lang niet hebt gehoord hoor. Dat doen ze met heel veel plezier voor u. Agla Boyan ke taraf lekar chalte hai aap sabhi ko. Aur dekha jaye to ye kuch Pilou Isk Sufiana आप सभी सुनिए। कोक स्टूडियो में बनाया गया है ये ब्यूटीफुल सॉन्ग टीसी रिमिक्स टेप। नेहा कक्कर श्री रामा मिल के सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कुछ दिन हुए है रिलीज किया गया है। साथ दे रही है नेहा के श्री रामा चंद्रा, म्यूजिक बाय वंस अगेन माएस्ट्रो अभिजीत वाखानी।

क्या बात है सुबह की, लाली है इश्क, पीलू इश्क सुफियाना ऑफ सैन नेहा कक्कर्स स्टाइल। और इस देखा जाए तो साथ दे रही थी नेहा जी का श्री रामा चंद्रा, म्यूजिक बाय अभिजीत वघानी। और आप द रेस्ट तो सुन चुके। 3:58 हो गया है साथियों। तो अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है, जरा दिल को हिलाए के स्टंप धर लिए। वक्त ये दो आवाजें हैं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जो हिल अपर्त है। मैं बात कर रहा हूँ महान गायक माएस्ट्रो पापों और डेग्रेट मलकाय हुस्न मलकाय संगीत मधुबंती बख्शी, ये दोनों मिलके ये अति सुंदर बयान को सजाए हैं, गाए हैं और कॉम्पोजिंग में भी दोनों ने मिलके काम किया है। म्यूजिक सुपरवाइजर्स आहान शाह जी के साथ शमीर तंदन जी का बनाया हुआ ये ब्यूटीफुल धुन। और क्या आवाजें हैं, जरा आवाजें पे और लफ्जों पर जरूर ध्यान देना। एक्ट एक्ट अपार्ट स्टेम ओम ये जिसमें तूने के पापों फुर्त एस होर्ड मैं खुद वो धागे वाला जो गनवा रहा। ओ माय गुडनेस व्हाट इन स्टेम एंड नान दीफान मधुबंती बख्शी ऑफ रात में खुद। क्या आवाजें है स्पेशल आप सभी सुनने वालों के नाम आज की रात। और ये मोह मोह के धागे रेनर्थ इडिस्टेम एंड न्यू इनहेल न्यू नंबर, वही दोनों आवाजें टुगेदर। एंजॉय इट।

Ja, maar hey, kort, maar heel krachtig. Ik wou dat het longelen wat langer duurde. Hè? Wat een mooie stemmen zijn dat. Agla, bayan, zara, dilwa ko bhi hilali ek bar fir. Ab, mai lane wala hoon aap sabhi ke khidmat mein mashhoor gaane wali is zamane ki sunche ji ko aur ganja wala ko. लेकिन उससे पहले कुछ आखिरी शेर सजाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में. अर्ज किया है साथियों की आज जरूरत है जिसकी वो पास नहीं, अब उनके दिल में वो एहसास नहीं है, तड़पते हैं दो पल बात करने को, शायद अब वक्त हमारे लिए उनके पास नहीं है. ये भी होता है यारो मोहब्बत में. नजर से इशारे और रुख पे हिजाब, नजर पे इशारे और रुख पे हिजाब होता है, थोड़ा थोड़ा तो हर कोई खराब होता है. अर्ज किया है तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहां से लाऊं, मैं मांगता हूं हर सफर में साथ तेरा, मैं मांगता हूं हर सफर में साथ तेरा, तू भी तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीर कहां से लाओ. दुआ मांगो खुदा से भाई. मोहब्बत क्या है समझो तो एहसास, देखो तो रिश्ता, कहो तो लफ्ज, चाहो तो जिंदगी, करो तो इबादत, निभाओ तो वादा, मिल जाए तो जन्नत. What a definition from मोहब्बत शेख. वाओ. ओए पागल, तुमसे लड़ाई होने के बाद गुस्सा तो बहुत आता है, तुमसे लड़ाई होने के बाद गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन सोचता ये है तुझसे बात किए बिना रहा भी नहीं जाता. वही तो सच्चा मोहब्बत है ना. आखिरी शेर साथियों, बोलने में सेकंड लगता है, बोलने में तो सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझने में दिन लग जाता है, साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है. नखे बोलने में सेकंड लगता है, प्रात है पियन सिकंद नूडक, सोचने में म्यूनिट लगता है, आशमुद्देन के अपिमारन म्यूनिट नोरख, समझने में दिन लगता है, अम तो बखरेप है पियन तख नोरख, और साबित करने में अम तो बवेस पूरी जिंदगी लग जाती है. मुझे यह हेल लीफ लांदर फोरवर्क क्या बात है, अम इमान इट्स तो बवेस दिस बेफोरवर्ड लिफ्ट. ये था कुछ आखिरी शेर्स आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, और वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन जो मैं वादा किया हूं वो तो निभाता हूं. सुंच और गांजा वाला सुनिधि चौहान और गांजा वाला जी का ये सुपरहिट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी भागम भैंग भैंग. ओ कुछ भागम भाग. म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती जी के साज है और अल्फाज है द ग्रेट राइटर लिरिक्स मास्टर द वन एंड द ओनली माएस्ट्रो समीर तेरे बिन.

Tere bin, beautiful song, wonderful song, Monsieur Ganewala uit de jaren 90. The one and only Kunal Ganjawala, saat de Rahiti Sunidhi Chauhan, aur sangeetkar Pritam Da Chakravarti ke banaya hua ye meetha dhun aap suna. अगला बयान एक लाइव रिकॉर्डिंग है और वो भी महान जबरदस्त गायक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का विनोद कुमार का छोटा भाई रूप कुमार राठौड़ जी को लाते हैं प्रोग्राम में और उनका ये सुपरहिट सॉन्ग आप सुनिए. लाइव रिकॉर्डिंग है और दिखा जाए गाने का बोल तो चलूं. From the movie Border.

0: Thank you.
1: Beautiful song, live recording hua for Roop Kumar Rathod from the movie Border. Aur itna haseen bayan jo live musician ke saath wo Bharat mein जबरदस्त कॉन्सर्ट दिया था जो काफी लोग लाइव को देख रहा था और सुन रहे थे और उसी कॉन्सर्ट में से ये अपना मैं चुनकर आप सभी को सुनाया। धीरे धीरे वक्त भी करीब रहा है साथियों, तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे। इट्स अ कॉफर्ड सॉन्ग फ्रॉम किशोर दा और कॉफर्ड किया है हमारे ख्याल से इस जमाने का द क्वीन ऑफ मेलोडी श्रेया घोषाल जी, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग एट द फिल्म कुदरत

किशोर दा का गाया हुआ एवरग्रीन सॉन्ग हमी तुमसे प्यार कितना एन नदीले दित केर कॉफर्ड डोर द क्वीन ऑफ मेलोडी हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का और वो भी इस जमाने का द ग्रेट श्रेया घोषाल जी। और देखा जाए तो ये सॉन्ग को रिक्रिएट किया है राज आंशु जी, म्यूजिक प्रोड्यूसर मास्टर किया है, क्या बात है, महान संगीतकार आदित्य देव जी ने और विजय दयाल जी के स्टूडियो में ये लिया गया है। तो मिल के सुनते हैं, जरा दिल को थाम लीजिए।

What a great singer, the queen of melody, इस जमाने के हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का कॉन्फर्ट बाय श्रेया घोषाल, हमें तुमसे प्यार फ्रॉम द मूवी कुदरत और सीरियल सॉन्ग दौर लता जी एंड किशोर दा। साथियों, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। ये आशामीद लेकर घर को जा रहा हूं, क्योंकि यही तक था आज का हमारे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये आशामीद लेकर घर को जा रहा हूं साथियों, कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर कुदरत जिंदगी ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे में आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूं कुछ फरमाइशें लेकर और कुछ पुराने नगमे। तो हमें आप सभी इजाजत दे, हमारे बात आप सभी को सेवा करने वाला है बड़का भैया श्री चंद्र सेन गंगा जी, और उनका साथ देने वाला है भाई यूसेफ जी। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, और जाते जाते तो कुछ ना कुछ तो गुनगुना देता हूँ। आज भी दादा हेमंत कुमार के याद में कुछ गुनगुनाता हूँ।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हुआ तेरा वादा दर भर गीत ब्रोकन हार सॉन्ग।

पहला डर भरा गीत नाइटिंगेल लटक के आवाज में आप सुनेंगे खिलते हैं गुलियाँ खिल के बिछड़ने को

जीते हो किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो है, इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 11 मिनट व्यतीत हो चला है, 8:11 और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाग शहर से। जो बीमार है लाचार है, तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी हुआ, कोई भी उत्सव है, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले कार्यक्रम आप सुन रहे थे भैया बीरबल से, भैया सुरेन भगवान दीन जी से। भैया सुरेन, बहुत बहुत धन्यवाद आगाह करने के लिए। आपको शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, मैं अपने तरफ से, और भैया यूसुफ जी मेरे सामने बैठा हुआ उनके तरफ से। भैया सुरेन, बीरबल, भगवान दीन, आपको शुभ रात्रि। सोंदखनी को खुश से 9 तारीख अगस्त हो गया, आप तत्पर है। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में होंगे, सुबह होगी, शाम होगा या रात होगा, बहरहाल आप सबको एक शुभ शाम, शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हॉलैंड देन हाग शहर से। हमने कहा सोंदखनी को खुश से, इसका मतलब ये गीत गजब के कार्यक्रम यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ देंगे। तार का नंबर तो आपको अवश्य मालूम है, लेकिन अगर भूल गए होंगे, कहीं लिख कर रख दिए होंगे, और रखे हुए चीज़ कभी कभी नहीं मिलता है, तो हम आपको बताते हैं। 0 7 3 5 6 7 2 2 6 4 या 0 7 3 5 6 7 2 6 7 7। भैया यूसुफ, कैसे समाचार है? अपना आवाज सुना दे ब्रूर। क्या कर ले आज तू ब्रूर, इतना गर्मी में? ओके, मोई मोई मसलक। अरे तो हम लोग के कोलेग के पास गए, भैया अनिल के पास गए ले। नहीं मोई, अच्छा भले तो हो जाए। ओके भैया, यो थैंक यू। तो लीजिए, पहला सिलेक्शन हम पेश कर रहे हैं यहाँ से, जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को, और तार ढूंढ रहे होंगे अपने किचन में या रसोई घर में छोड़ दिए होंगे, या बेदी पर स्प्रे के नीचे छोड़ दिए होंगे, तो अगर ये दूसरा तार होगा, तार करके देख सकते हैं कि तुम्हारा तार गुम कहाँ हो गया, क्योंकि ये भी होता है। जैसे एयर फायरिंग दी मैन आलते मेमाक। तो लीजिए, पहला सिलेक्शन हम पेश कर रहे हैं इस तरह से, मदन मोहन के साज पर,

0: तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। रफ़ी साहब की आवाज़ में आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इस वक्त लाइन पर कोई है, लेकिन उससे पहले मेरे मोबाइल पर किसी ने तार की है। चलो मोबाइल को ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा पता है ये घर पर नहीं है, लेकिन भैया की दिली ख्वाहिश है हमें मोबाइल पर तार की। और भैया चांद नमस्कार।
1: नमस्कार भाई,
0: कैसे समाचार है? बस चले धीरे धीरे, ऊपर वाला के दया से आप लोग के कृपा से चले ब्रूर।
1: अरे रेडियो सुनीला,
0: हाँ ये फालतू बीच है वह माँ। हेलो, हाँ हाँ
1: हाँ
0: ओके। तू ऐफा आप एगो एगो एगो, एगो दूसर स्थान ले ले चान, एगो दूसर स्थान ले ले तो साई था।
1: अच्छा
0: हाँ सुना है अब हाँ। अच्छा भैया चान कौन गाना मांगा तो ले सुने।
1: बहारों के सच,
0: बहारों ने किए सजदे, सही कर
1: जी हाँ जी हाँ।
0: बहारों ने सजदे चान रघुनाथ रिखर ब्रूर। हाँ अच्छा तुम तो के बहुत स्टोर ना करब मत नहीं वैफाल हो जाए एनान फाल दंग की वेल दचे वो कानून से खुदाख्त एन आन गीत गजल है खुदाख्त एन आन दी सोन दख है खुदाख्त।
1: बहुत धन्यवाद आपका भाई।
0: अच्छा चान या योग
1: अच्छा
0: या फेन दख फेर दर खिस, हाँ और खिसला के खुरूत।
1: अच्छा
0: ओके ब्रोर ऐसे ही रही फेन आफन।
1: अच्छा
0: नमस्ते।
1: अच्छा राम
0: जय सी राम। अच्छा ये था भैया चांद रघुनाथ जो तार की घर पर नहीं था, लेकिन इसकी दिल ख्वाहिश थी कि तार मार के एक गीत मांगे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमेशा की तरह। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है दूसरा लाइन पर। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुद ना हुंत खुद ना हुंत सिला कैसे रहले चले धीरे धीरे
2: या।
0: अच्छा मयूरस्त खान
2: या।
0: ये निद्रुक माँ का यो सब तुर खती नगो ओ ना तू मंगिया है यो सब खती है वक्त इच्छा सिला इन मोमेंट। हाँ सिला हम तो क्या आज ना मुई लग कर तू बताओ कौन गाना मांगत रहे सुने तू।
2: फिल्म वक्त
0: हाँ
2: चेहरे पे खुशी छा जाती है।
0: चेहरे पे
3: आदमी
0: खुशी छा जाती है रिखल
2: ओके
0: या सिला या योग दान के वेल रुस्त खान या एंड टॉट द फॉल कुंड केयर फाइन आफ तक सिला। ये थी सिला जी माशू का इपन बुरख के रहने वाली, और इस सिला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। भैया यो उसको ही है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुद नाफंत।
4: अस्सलाम वालेकुम, राम राम और नमस्कार शुक्रिया का।
0: वालेकुम अस्सलाम भैया नमस्कार, कैसे समाचार है?
4: चले चले चले कैसे सबकी खैरियत?
0: बस चले धीरे धीरे क्योंकि जाए हाँ मोहम्मद दनहा के रहने वाला भैया मोहम्मद।
4: हाँ
0: अल्फाज पहले बता दे कौन गाना मांगा तुमने सुने आज के
4: रात? गाना हैगा फिल्म अग्नि प्रेमी
0: हाँ
4: निखत इंसेसन निखत के हैगा
0: हाँ,
4: और गीत हैगा रोशनी चांद से होती है, गाय से बप्पी लहरी और कविता कृष्णमूर्ति।
0: रोशनी
4: चांद से होती है,
0: चांद से होती है सितारों से नहीं रिखल। अच्छा बताओ कुछ धल ले
4: ना एगो छोटा वाल माई ई गनवा के हम एगो छोटा वाल धल लियो कर
0: मोई मोई गो है।
4: रोशनी ये चांद से होती है सितारों से नहीं, प्यार सिर्फ एक से होता है हजारों से नहीं।
0: अरे वाह क्या बात है
4: ये छोटा वाल पहली
0: हां ना मोई प्राप्त रिखल मोई कर ले गनवा के एगो तू कविता बना दे ले तो
4: के लिए
0: और
4: dat is dat toevast op Maleis.
0: Dankjewel. Hey, okay. Benja Mohamed, dankjewel. Ik wens jou een fijne avond.
4: Ja, ook hetzelfde. Hè.
0: Heel veel luisterplezier en, ja,
4: en
0: tot
4: heel veel
0: de volgende.
4: Succes.
0: Haboom,
4: met het programma.
0: Bedankt zo.
4: Assalamu alaikum
0: ramah. Namaskar bhaiya. ये था भैया मोहम्मद दनहा के रहने वाला. कोई है? अच्छा, इस वक्त कोई नहीं. आप तार कर सकते हैं 9 7 3 2 6 2 7 7 या तो 3 5 6 2 7 7 या तो 3 2 6 2 7 7. यो साहब ब्रेल के नीचे समके ताक दिए इसके गंगा तो का बोला है. होता है, होता है, गर्म है तो मखुद. चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं और वो ये है इस तरह से. चलो हम आपको सुनाते हैं.

0: फॉर मोर एंटरटेनमेंट।
1: फिल्म धूल का फूल में से निकाले हैं आशा जी और महेंद्र कपूर जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को नल से इवन तक दरी फाइव सस तक तुन तुन तक सेफन फेर तक या तो नल से इवन तक दरी तुन सस तक तुन तक सेफन सेफन तक। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और तुरंत हम शुरू कर दें यहाँ से गीत गसर का कार्यक्रम में। देखते हैं भैया जी नहीं चलो एक गीत पहले आप चला देते हैं उसके बाद लीजिए यह शानदार गीत सुनिए एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

मैं नाचू तू बंसी बजा एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी आपको सुनाए हैं। देखते हैं फिल्म जाग उठा इंसान, निगती फिरन तख्त 1984 का ये फिल्म है जाग उठा इंसान। हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत के गजल के कार्यक्रम में। तो चलिए पहले नंबर में पेश करते हैं अल्फन ऑन द रेन, अल्फन ऑन द रेन के रहने वाले श्रीमान चांद रघुनाथ और उनके धर्मपत्नी खीसला के लिए शुभकामना के साथ। चलिए एक शुभ रात्रि पेश करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, भैया चांद रघुनाथ और खीसला जी के लिए।

मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुनाए हैं गीत गजल के कार्यक्रम में, जबकि सोन रखनी को खुश से अल्फनंद रैन के रहने वाला श्रीमान चांद रघुनाथ, उनकी धर्म पत्नी खिसला भैया चांद ने मांगे हैं खिसला के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए। फोन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से भैया चांद और खिसला जी को आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है शीला जी के लिए, इपन ब्यूर के रहने वाली माशुका शीला जी के लिए हम चला रहे हैं। और शीला जी ये गीत मांग रही है अपने माशुक के लिए जो मेरे सामने बैठा हुआ है भैया यूसुफ के लिए, एक शुभ रात्रि शुभकामना पेश करते हुए प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ। चलिए शीला जी की तरफ से ये शानदार गीत हम चला रहे हैं और देखते हैं, जी हाँ, फिल्म वक्त में से निकाल कर, हाँ चलिए ये शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से माशुक शीला जी की तरफ से, माशुका शीला जी की तरफ से माशुक यूसुफ के लिए।

चेहरे पे खुशी आ जाती है। और ये शानदार गीत आशा जी ने सुनाए गीत गज़ल के कार्यक्रम में, जबकि इबन बेरक के रहने वाली माशुका सीला जी ने ये गीत मांगे हैं अपने माशुक यूसुफ के लिए, शुभकामना के साथ, शिवरात्रि प्रेम प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा ये गीत चलाया गया। सीला जी, उम्मीद है गीत आपको गीत अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस गीत का जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों मिल के चलाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, और वो है दनहा के रहने वाले भैया मोहम्मद के लिए। भैया मोहम्मद, आपकी मांगी हुई गीत हम लोगों को मिल गया है, तो हम चलो चलाते हैं। नीख निशा से नीख तक का ये गीत है, और भैया मोहम्मद ये गीत मांग रहा है, यानी मांगे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए और सुनने वाले श्रोताओं के लिए। तो लीजिए, सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से धन्यवाद देते हुए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद देते हुए भैया मोहम्मद के लिए ये गीत मैं चला रहा हूँ। भैया मोहम्मद, इस तरह से आ रहा है।

प्यार एक से होता है हजारों से नहीं, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं बप्पी लहरी के साज पर, बप्पी लहरी खुद कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ, फिल्म अग्नि प्रेम में से निकाल कर निकली ससन घंटे 1996 का ये फिल्म है हमने पेश की। और ये पेश करने वाला था, करवाने वाला था, दनहा के रहने वाला श्रीमान मोहम्मद जी, श्रीमान मोहम्मद जी के लिए ये शानदार गीत पेश हुआ। भैया मोहम्मद, उम्मीद गीत आपको अच्छा लगा होगा, और उन्होंने ये गीत मांगे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और ख़ास करके पावन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए शुभकामना के साथ। भैया मोहम्मद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, गीत गज़ल के कार्यक्रम में आपने भाग लिए। चलिए, जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को, तार इस वक्त फ्री है, तो हम चलिए एक अनासर चॉइस चलाते हैं, और वो ये है।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: www.vahonfm.nl पर आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। गीत गजल के कार्यक्रम जारी है और देखते हैं लाइन पर कोई है। फोन हिंदुस्तानी रादी खुदनाफंद खुदनाफंद मुफरो मिला। कैसे रहिले मुफरो मिला?
3: अच्छा रहिली। आप कैसे?
2: बस चले धीरे धीरे के गुजार काल भैया मंसूर के
3: वही अच्छा है यार।
2: ओ तब मुई इसे बाल थोड़ो है कि हो है और फकांसी है मंसूर के बड़ा तीखा फालो इसाइट फुटबॉल बना रहे इस तीखा फालो
3: या मैं वैसे ही लोग वैख है मैंने दंगा वो हाँ ओके
2: नहीं प्रिमा सोच
3: या तो इस मौज वेर तो
2: प्राप्त मुफरम मिला बताओ कौन गाना मांगते रहे उसे
3: फांसे नम दास्ता तेरी नैनो में प्रीत है
2: तेरी नैनो में प्रीत है ओके
3: अरे प्लीज दिस फॉर ऑन्स बाइड
2: ओके
3: अंत दिस नाम सो वार 56 जार गेट्रोउड
2: ओके फन हार्ट गेफेलिसिटेट एंड व्हाट इट वाज दैट
3: या
2: व्हेन इट वाज दैट
3: दैट वाज इन 3
2: ऑगस्ट ओह गो दैट इज पास फॉर होमे
3: या
2: नो नॉकमास फन हार्ट गेफेलिसिटेट
3: दैंक यू
2: या And then
3: select
2: for you Liyav Draya. Yes, good. Yeah. Oh, kuch sher shairi dhallem from Mila?
3: Na, kuch na. I got to be shuk.
2: Okay, okay. Ne, prima. Yeah. Next time, khayf nid.
3: Yeah, yeah, then select. Yes, good. It's a shuk.
2: Okay. From Mila, for the rest, or kuch besonder heide?
3: Nou, is een bijzonder reden.
2: Oké, fijne dag dan. Fijne avond, heel veel luisterplezier.
3: Ja, u ook en bedankt.
2: Ja, dank u wel. En nogmaals jullie beiden van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dank je.
2: Fijne avond, ja. Dag.
3: Goedenavond.
2: Goedenavond. Ye thi Mila ji, Soetermeer, ke rehne wali. तो लीजिए अगला गीत। हाँ पहले इसे बंद कर दूँ और गीत ढाल दूँ आपके लिए। तो लीजिए इस तरह से आ रहा है और वो है मेरे सामने बैठा हुआ भैया यूसुफ। माशूक यूसुफ इबन वगैरह के रहने वाला है। वो गीत मांग रहा है अपने माशूक आज जो इबन बिरख में बैठी हुई है प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ। श्रीमान यूसुफ ये गीत मांग रहा है अपने माशूक के लिए। तो लीजिए माशूक की तरफ से माशूक के लिए इस तरफ से इस तरह से आ रहा है।

0: मुखातिब हैं।
1: मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म एक दिल सौ साने में से निकाले हैं। 1963 का ये गीत नेक इंद्रिय शस्त्र का ये गीत और सुनाया गया गीत गजल के कार्यक्रम में। जबकि मेरे सामने बैठा हुआ है माशूक यूसुफ और उन्होंने मांगे हैं ये गीत अपने माशूका के लिए जो इपिन बर्ग में बैठे हुए हैं। शुभकामना के साथ प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ ये शानदार गीत पेश किया गया ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। भैया यूसुफ और शीला जी आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, चलिए इस तरह से आशा जी है।

वाह क्या बात है, नौशाद अली के साज पर ये शानदार गीत पेश हुआ रात्रि के कार्यक्रम में हमने पेश की। और देखते हैं आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म गंवार में से निकाल कर नौशाद अली के साथ साज पर ये इसे मैंने कहा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है मीला जी, सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए मीला जी और भैया मंसूर के लिए दोनों के विवाह संस्कार के जयंती जो था तो ये के बहुत बहुत बधाई हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से। और लीजिए आपकी मांगी हुई गीत मैं पेश कर रहा हूँ मीला की तरफ से मंसूर जी के लिए और जनाब मंसूर जी की तरफ से मीला के लिए, प्रेम प्यार मोहब्बत और इश्क के साथ। चलो ये गीत है

मैं तेरी तू मेरा बालम तेरी मेरी जीत है, फिल्म दास्तान में से निकाल है निकिता फेफ्त का ये गीत। जी हाँ, नौशाद अली के साज पर सुरैया की आवाज़ में, और पेश हुआ सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी की तरफ से भैया मंसूर के लिए, और मंसूर जी की तरफ से मीला के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपके बहुत बहुत विवाह संस्कार की जयंती बहुत बहुत बधाई हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से। घड़ी पे देखो तो करीबन 20 मिनट व्यतीत हो चला है 9:20 ऊपर नहीं, और यह लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है फाउनिस्तानी रेडियो द्वारा देनहाग शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

0: तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। आशा जी और रवि साहब मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत गीत गजल के कार्यक्रम में। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं लाइन और हिंदुस्तान राज्य खुद नाफंत खुद नाफंत।
1: हेलो
0: हेलो दख मुफरा इरसिला कैसे रहिले?
1: तो कैसे
0: बस चले धीरे धीरे बड़ा दिल बतोरा आवाज सुन ली
1: इसना फोर खवे एक पास ही मफर ही तो चली फोर हुई
0: देख ले दस दस से खात खले
1: सुन ना तो कैसे चलो कैसे ऐसे खुरी हो ये थे यार चलो
0: ना तू ना बेल कर ले तो
1: एक पास बेल मैं एक पास फरखे तो फोर खवे की तो लोग यूली बाहर दे
0: ओ या ओ स्टार बुतुल ये
1: सुन ना सुन ना
0: नहीं करो मेरे खात दूर खीफा याद हो
1: या मत दिन नंबर गिंग बे इवन अंडर एंड दी पर्सन नाम ओ प्लीज मत स्प्रेक Toen zei hij, ja, hij zegt, nou, daar zijn ze er niet, dan gaat hij over bij hem, die nummer.
0: Klopt, als het een paar keer overgaat, dan gaat hij overschakelen naar de planner van Vrouwen in de Stadion.
1: Oh, ik dacht, oh god, ik zei, nee hoor, dat geeft helemaal niet, zegt hij hoor.
0: Oh, hij zegt,
1: vandaar, ik zei, excuses voor hoor.
0: Nee, kooi wat, nee.
1: Maar het warm, is het zo warm?
0: Toen dat de chapie heet hoor.
1: Ik was een paar dagen weg.
0: Oh, तो गर्मियां लेके आई ले होइए वर्षाएं
1: या कुछ नहीं बना दोइस लंग नहीं लामे इसे
0: ओ मोई नहीं तो तो खबर है
1: मुझे ओके ना वही जैसे मैं चल रहा हूँ मैं
0: प्रसिस
1: एक बनी सो वैसे हंटी मार खुद
0: माँ मैं देती हूँ ऐसा दालती तो एक अम्म मैं जब
1: या तो सही थी ही उसे वे मुंह इसी बैनन स्लाब के पंच स्वामल स्टूल ने खाई दरी स्वामल है बैठन
0: आ, नहीं
1: हमें चली खा तो खुद
0: हाँ हम लोग संगे चले धीरे धीरे रुस्तखान
1: धीरे धीरे
0: वो सही रोग ग्रीफ
1: फिर ना बहुत जोर जोर ना चली है
0: नहीं नहीं नहीं जानी ला वो बोले हाथ लोबर सही दूध लोबर तो दस दांत बुत वही नहीं दूध
1: हाँ फ्री फ्री
0: मुफरा इरसिला uit Rotterdam. Bataau kono geet gazal me kuch.
1: Vandaag gaat het voor jou niet hoor. Vandaag lukt me niet.
0: Geef niet.
1: Volg heb ik beter.
0: Nee, prima. Acha. अरे तो बाकी तो वक्त ही एक चीज तो वेल जानत हुई है वेल कराओ को ली था पी लास्ट का सॉन्ग हाँ सुना देख रही
1: है एक वक्त है एक वेल आलस उपखलो मैं या वेचे वक्त पिस एक उनी बै इदर इंस्टीर एक बेस ऑफ सॉन्ग चांद चांद जाने का हो गया तुमको चेहरे से पर्दा हटाना ना जा बेस ऑफ सॉन्ग
0: प्राक्तिक लीड तुम के तैयार द पारल याद धरा दे
1: ओ दे और दे से तो खुश हूं मुझे कितना प्यार है तुमसे
0: ओ फन तैयार द पारल
1: या दिस दे से थ्री नाउ खत नख इन खुश हूं और दे से ओ सो साल पहले मुझे तुमसे प्यार था
0: हां क्या बात है फिर मोई
1: या खत मोई खुश हूं सके से और
0: Dat geloof ik best.
1: Ik weet kippenvel van.
0: Nee, dat geloof ik best.
1: Ik ook, ik heb echt een brok in mijn keel.
0: Gewoon door blijven gaan.
1: Ja, ik doe mijn best hoor.
0: Mevrouw Irsvila, met welk lied kunnen wij jou vanavond blij maken?
1: Een bolli of hem toch? Nee, ik ga die Jozef
0: ook. Oh, Jozef, kom dan naar.
2: Gaan we film Admi Musafir.
1: Oh ja, ja, Admi.
0: Oh, de title song?
2: Ja.
1: मुसाफिर है आता
0: है जाता है और आगे जा और आगे
1: एक अपन बीच मोइले के टाइप नो दिस फंदारे गीसे ने वाले
0: ओके ने प्रिमा
1: ये भी है आता जाता ये भी इस टाइप फन को में टाइप
0: फन फन या
1: वो दोनों निक्स फन
0: नहीं दर इस इंद्रदास हो
1: Je moet mooie dingen denken ook toch?
0: Precies, dat klopt. Ja. Aan goede dingen denken, kwade dingen is gewoon weer achterwege laten. Ghana heb je betaald toch?
1: Ja, Ghana. Daarom ben ik even gaan verdiepen in mooie nummers hoor.
0: Precies, goed. Heel mooi.
1: Deze vind ik wel mooi hoor. Oh, deze was ook de Sakina Koi Mandil.
0: Sorry?
1: Sakina Koi Mandil, dit moet ik nog even kijken.
0: Oh, de Sati, van Mohammed Rafi.
1: Ja, ik hou van de burgerman.
0: Zat in een goeie manziel in de
1: pijt. Ja, die ken je toch ook?
0: Ja, die ken ik.
1: Deze was ook...
0: Chala, tujhe leke, I will jane kaha
1: zoiets. Ja, roep tera mastana, pyaar tera diwana, phool khoina, humse ho gaya.
0: Parra, parra. Prachtig. Heel mooi.
1: Ja, ik doe mijn best hoor.
0: Nee, prima. Dat doen wij allemaal ons best.
1: Kun je ons het ook zien?
0: Radio is al kan je dat zien.
1: Ja, ik vind dat wel leuk.
0: We hebben een guru, hebben we guru. Hebben we een Suriname gehad, guru? Hebben we een guru?
1: Wat is dat?
0: We hebben een radio.
1: Ja. Ik heb een mooie vraag. Ik heb een
0: mooie vraag.
1: Ja, ik heb deze heb ik ook gezongen vorige week ergens anders. Wat zei je?
0: Het is film Jangli.
1: Die deed ook mooi, hè? Tumse mohabbat ho gayi hai mujhe palkon ki chhaon mein rehne do ehsaan tera ho. Dat is ook mooi.
0: Wow, kya baat hai. Shabas.
1: Dank je.
0: Oké, mevrouw Hirsi, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan hoor. Leuk dat jullie met je gesproken te hebben.
0: Ja, wij ook.
1: En
0: volgende week zijn we er nog hoor.
1: Sorry?
0: Volgende week zijn we er weer.
1: Ja, dat weet ik, weet ik.
0: En nee, als ik wegblijf of als wij wegblijven, dan geven wij altijd door.
1: Oh, maar wat af en toe doordeel kan je dan bien keer?
0: हां बोली ला बोली ला बोली बोलत बोलत गटई खिए सुखाई के और यूसुफ पनियो ना दी समके
1: आ यूसुफ कुछ चले बोल दी यूसुफ के कैसे असिस्टेंट बात तो के दान
0: हां
1: हां ना तो खराब ये ए मैं सो ब्लेव इट वन एंड इट वाज लुक इवन दैट वी इवन गबबल्ड हैव
0: सेकर वेटर
1: अच्छा ए क्रूचेस एंड टॉट स्टॉट स्नेल वेयर हैं
0: या टॉट द फॉरमेंट के या
1: सेन आफन.
0: Mevrouw Ursula, u ook. Fijne avond, heel veel luisterplezier en tot next time.
1: Ja. Oké, okay, bye bye.
0: Dag. Ye thi Ursula ji Rotterdam ke rehne wali. To jis samay aap tar kar rahe honge, tar utha kar ghumiye, ghumaiye, dabaiye, dhoondiye. Dhrimini to ufer half tin hai. 10 baje tak hum sab rahenge. To lijiye my mighty Mukesh, the heart of millions. का एक गीत आपको सुनाता हूँ इस तरह से देखते हैं निकटी सस सस का ये फिल्म है दिल ने फिर याद किया सोनिक ओमी के साज पर बहुत प्यारा गीत है.

0: ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, सोनिक ओमी के साथ पर 1966 का ये गीत, नहीं कहती सस्ते सस्ते का ये गीत, फिल्म दिल ने फिर याद किया हमें से, ये है, ये भी एक फेवरेट गाना है मेरा, हमने पेश की ओ फरफाउन हिंदुस्तानी और रेडियो हो। चलिए अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ और वो है रोटरडम। ओ कोई है लाइन पर? अच्छा एक मिनट, लाइन पर कोई है? फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत खुदनाफंत भैया कैसे आलस खुद बे यहाँ
1: या एक और दो कुछ मोर हो सके।
0: हाँ
2: वो
0: हो सके। हाँ मत हम सोची का भेल बे यहाँ नफ्स बेल करे तुम सोची आओ खुद मोर
1: चाव के ले।
0: हाँ एनुस बे यहाँ
1: बेल करती है या
0: आलस खुद
1: मत गंगा
0: चले धीरे धीरे ऊपर वाला के दया से तू लोग कृपा के कृपा से तू लोग के आशीर्वाद से चले
1: या तू लोग मोर
0: तो अपन खेत में काम कर चुके बे यहाँ
1: ना बोल तू इतना तो हमें अरे उनकी कहावत है
0: निकले
1: तो बकरो बकरो बोले है मैं तो द्रुपल वातर मैं तो द्रुपल वातर अमर वो तो फॉल मैं तो द्रुपल वातर तो
0: ओ यहाँ ना दिला जस्ट फॉल फॉल खुद द्रुपल द अमर वो तो फॉल
1: पानी में बोले बूंद बूंद से
0: बूंद बूंद से घड़ा भरे है।
1: हाँ हाँ तो
0: नहीं हेल मोई बड़ा दिन पसंद नहीं बोलाई करी
1: घड़ा कौन सी है
0: घड़ा इस क्राइक
1: ओ घड़ा
0: घड़ा किंग घड़ा माँ घड़ा हड़ा हड़ा फाइन राइट एंड रॉंग
1: घड़ा ओके
0: हाँ ओके बोले
1: बूंद बूंद से बड्डी भर जाए बकड़ा बोले और बूंद बूंद से घड़ा भरे ओके या
0: अच्छा भैया बताओ कौन सी मांगते ले सुने तो
1: एको गटैया में केकर
0: गाना कहीं हाथ पे केकर ने से निकाल गाना गा दे
1: ना मंगसु वो बनवाए जीने के लिए अंदाज आए कितने हंसी है जिंदगी
0: लिए अंदाज आए
2: कितनी हंसी है जिंदगी
0: हाँ हाँ मिले रिकल मिल जाए भैया
1: गरम ना
0: एंड फॉर द रेस्ट ऑफ प्रीमा
1: या प्रीमा खाली गरम लगे बे जाले बाहर बैठे
0: तो तू स्वयं बात में कूद पर स्वयं बात ना बनाई ले अपने तो इंच में
1: स्वयं बात ना बना ली बिरतुआ कह रहा वो बंद कर दे
0: ले
1: ना स्वयं कना स्वयं बात तो सब बंद है
0: ये ओक दात नो
1: ना
0: भैया एक दम की
1: हुआ दूसरा है ना दूसरा है ना
0: ओ हाँ
1: हाँ तो
0: हाँ ठंडा पानी पोल लिया
1: या तो या संध्या yes. सवेरे खूब गंगा ना वो
0: गंगा नहा
1: वो ही नाम करो ना वैसे करो फाइन आफन और फाइन अर्चनी
0: या डंक यू वेल भैया विल फील लॉस्ट फॉर प्लेसिर वैसे या
1: एंड
0: फाइन आफन
1: बट अर्चनी
0: या एम लाइफ लॉस्ट रे एंड टॉट द फोर्थ वे
1: या ओके दा
0: ये थी बेया जी यूट्रेक्ट के रहने वाली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत। हेलो
3: हाँ हेलो
0: मैं तू यहाँ पिकते एयर
3: एक होर अन्य जो सब तू बात आंबे लाइन
0: या दाग बेया
3: हाँ
0: अबे एक तू इधर बेया है
3: या
0: या
3: ना हो हम अपना थक गली हो गई सब एक आप मुफियादा
0: ओ नो फेलिसिटेट नो फेलिसिटेट बे या डबल फेलिसिटेशन
3: ओके हम लोग गए
0: नातिन भाईले के पोतिन कौन सी भाईले
3: प्लान en achter kleinzoon.
0: Achter kleinzoon, oh, pota.
3: Ha. En, okay, en maar de Kiniwala is 3 geworden.
0: Oké, okay. Gefeliciteerd.
3: Oei, hem loopt 4 keer bij Ayla Garen.
0: Mooi, heel mooi. Gefeliciteerd.
3: Dus daarom ben ik zo moe, maar ik dacht, ik bel toch nog. Ik heb een paar minuten tijd, dus
0: ja,
3: laat me het even toch
0: prachtig
3: bellen.
0: Dat doe je al die zappen gaan wat betalen bij je?
3: Mijn Ganwa? Aye, Bahar ko ham batlen.
0: Regal. Aye, Bahar to ham batle. Regal. Bea, to ke ko chota wala hoy to thama de de.
3: Yeah, happy girl.
0: Hoy mar.
3: Okay.
0: Hoy mar dere.
3: Kisi ne pucha dard kaisa hai? Mm-hmm. Ha, kisi ne pucha dard kaisa hai? हमने हंस के जवाब दिया जो अपना ऐसा कह के जो अपना होकर अपना ना हो
0: ओ मोई
3: तो सबसे सबसे बड़ा वही है कि जो अपना है जो अपना ना हो वही सबसे बड़ा दर्द है
0: दर्द इज इन द दैट्स सो दर्द पेन है
3: या
0: Ja.
3: En ik heb nog een kleine.
0: Heel kleine, Bia.
3: Ik toen je pooch lette, haal mera. Mm-hmm. Ik toen je pooch lette, haal mera. To ghar ke sari dawaiya phek deti.
0: Arre, wa, kya baat hai. Nee, prima.
3: Ja, toh. Ja, ja haal pooch liye koi ke, to kira vera sab bhag ja hai.
0: Nee, in de raad, so koi ke dek lele.
3: Atis toh ook so.
0: Ja, dat is zo. Koi ke dek lele, koi ke dard poochi.
3: Dat si, koi se baat kar lele.
0: Ja.
3: तो
0: दिल हल्का हो जाए बोले
3: प्रसिद्ध हमारा दत्रा इसने भी बोले ये हाथ हम हमारा दत्रा बोले ये हाथ 28 तो बोले तू बहरे चल जाइए तो जितना तोर पीरा रही तो पीरवे ना तो के लगी कि पीरा है जहाँ घरे आईले dan begint het weer.
0: Okay. Nee, dat is inderdaad zo.
3: En dat ja? ervaar ik ook. Dat ervaar ik ook. Ooit zijn wat nekrieliger was. Hè.
0: Precies, dat moet ook gebeuren.
3: Ja,
0: Bea, dankjewel.
3: Ja,
0: ik wens jou een fijne avond. En nogmaals, dubbele, trippele felicitaties. Van jouw verjaardag en van je achterkleinkind.
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Is goed.
0: Dag Bea, tot
3: ja, dag. Dag. Fijne avond. Veel plezier.
0: Dag.
3: Ja, dag. Dankjewel.
0: ये थी बेया जी देना के रहने वाली तो लीजिए हम पहुंचते हैं उर्सिला के पास रोटरडाम के रहने वाली उर्सिला जी शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए रोटरडाम के रहने वाली उर्सिला जी के लिए इस तरह से

आदमी मुसाफिर है आता जाता है। और लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत हमने पेश की फाउन इंसानी राजीव गीत दशक के कार्यक्रम में रोतरदाम के रहने वाली अर्शीला जी के लिए। अर्शीला जी गीत उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आया होगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है अर्शीला तो रोतरदाम। चलिए अगला गीत हम पेश करें बेया उतरख के रहने वाले है बेया जी के लिए। चलिए ये शानदार गीत बेया जी हीर कॉम दत्त उतरख बेया जी।

जीने के अगर अंदाज आए आपको सुनाया गया आशा जी की आवाज़ में ऊपर पाकिस्तानी रेडियो। और ये गीत हमने पेश की बेया जी के लिए, उत्तराखंड के रहने वाली बेया जी के लिए शुभकामना के साथ शुभ रात्रि पेश करते हुए। चलिए आखिरी गीत बचा है और वो है बेया दनहाक वाली। बेया जी, बेया गजराज जी दनहाक के रहने वाली है। तो लीजिए बेया जी, बेया गजराज जी दनहाक के रहने वाली, इस तरह से आ रहा है ये गीत बेया जी के लिए।

0: आर को हम बांट ले फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा ये गीत चला, इस तरह से हमने पेश की। और देखते हैं ये गीत चला दना के रहने वाली बेया गजराज जी के लिए। बेया गजराज जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। भैया यूसेफ सभी को धन्यवाद दीजिए। भैया यूसेफ
1: dat is de heer Tjan Ragunat uit Alphen aan de Rijn, mevrouw Sila uit Ypenburg, de heer Mohamed uit Den Haag, de heer Jozef uit Ypenburg, mevrouw Mila uit Zoetermeer, mevrouw Ursula uit Rotterdam, mevrouw Bea uit Utrecht en mevrouw Bea Gedraaid uit Den Haag. Dat waren de bellers voor vanavond. Hartelijk dank.
0: Joost, dankjewel. Jij ook hartelijk bedankt en tot de volgende keer.
1: Ja.
0: सुनने वाले श्रोताओं और यूसेफ ने सभी को धन्यवाद दे दिए और मैं अपने तरफ से सभी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। नाम नहीं लूँगा क्योंकि भैया यूसेफ ने नाम ले चुका है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा साथ दिया, और जो लोग लाइन पर नहीं आ सके उन लोगों को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। अगले सप्ताह आप तार कर सकते हैं। यहाँ तक था यह कार्यक्रम। मेरे बाद आप सुनोगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद बाकी कार्यक्रम हमारे सहयोगी आपके आपको सुनाएंगे। और मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला दोंदरदाख। जी आने वाला दोंदरदाख तो से 12 यूर एंड 3 यूर्स में रख 12 बजे रात के ना 12 बजे दिन के तो से 12 एंड 3 यूर।

फाहुंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 6 2 2 6 9 8। फाहुंट हिंदुस्तानी रा

और जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्या आपको मालूम है? आपको पता है कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं हमारे यारों? तो जरूर हमसे आप बता देना। हम चलते हैं अलका की ओर, अलका याग्निक की ओर, और फिल्म का नाम है खल नायक। इस निशोन ओ फिल्म से मार इट इज हेले मोई नंबर लात वे दी ओके खान draaien voor de mensen die namelijk niet alleen oude nummers, maar ook nieuwe nummers horen. Het is niet helemaal nieuw, maar toch wel.

की में होके सवार चली रही। फिल्म का नाम है खलनायक। खलनायक के बाद हम जाते हैं, क्या आपको भी प्यार हो चुका है और अपने प्यारी को कहते हैं कि आज नहीं कल नहीं लेकिन 100 साल पहले भी हमें तुझसे मोहब्बत थे। नाइटिंगेल लता जी, आशा परेख देवानंद का ये फिल्म है। सॉन्ग है पद्मा श्री मोहम्मद रफी और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। बहुत लोग इस गीत को पसंद करते हैं, मुझे यही उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा लगेगी। कारण कि ये गीत सुनते सुनते सुनते सुनते लेकिन दिल कभी भरता ही नहीं है। आओ सुना जाए।

सौ साल पहले तो मुझे ये प्यार था, मालूम नहीं है कि सौ साल पहले हम क्या थे दोस्तों, वो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक गीत आपको हम सुनाते हैं और वो है कभी कभी दिल से लग जा गले। नैतिकी लता जी फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है वो कौन थी। वो कौन थी नहीं कहती हॉन्टेड एंड फिनेस का। इस फिल्म में काम किया है मनोज कुमार, साधना, हेलन, प्रेम चोपड़ा। आओ चला जाए लग जा गले में। क्या है

गले लग जाना लग जा गले तो फिर ये मुलाकात हो ना हो। नाइटिंगेल लता जी फिल्म का नाम वो कौन थी। और ये गीत जो है दोस्तों हम चलते हैं हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं है। किसी से जब प्यार करते हैं तो उसका जवाब तो कभी हो ना हो, हो ना सके। परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, मूवी के नाम है घराना 1961।

हुस्ने वाले तेरा जवाब नहीं है, और हुस्ने वाले तेरा जवाब के बाद हम जाते हैं, और वो भी एक ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग आज के मूड में है, वो है और ये है फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है आपकी परिछाइयां। नीख 1964 में से मैं निगाहें तेरी चेहरे से परमाश्री मोहम्मद रफी, एक रोमांटिक सॉन्ग है जिस फिल्म में धर्मेंद्र काम किया है। आओ सुना जाए ये क्या है भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा गीत होगा।

और दोस्तों और मैं निगाहे तेरी चेहरे से परमान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है। उसके बाद हम चलते हैं एक सुपर हिट ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग है और वो है माइती मुकेश नाइटिंगेल लता जी का एक फिल्म है। आपको ये गीत जरूर सुनना चाहिए

0: नैनू में क्या आने वसी फिल्म के नाम है वारंट मेंसन, दैट इज द इंग्लिश नाम, और अतन हेला मोया जोंग जो आपके हम लिए चला चुका है। तो ये बात है हमारे यारो दन खाव नाम लखनर अंदर मोया नंबर वीर फिल्म के नाम है हांगकांग 1962 के एक पास नोख नहीं खबर मेंसन एंड स्टार ओ माय गॉड हसीनो को और क्यों दे दी तूने है। और इस फिल्म में जैसे लिखा है तो ये फिल्म हांगकांग है, परमाचिन मोहम्मद रफी आशा जी का फिल्म है, ओम प्रकाश एक्टर किया है इस फिल्म में, काम किया है, आओ सुना जाए।
1: ओ माय गॉड।

ये भी एक मस्त बड़ी सॉन्ग है। फिल्म के नाम है फागुन, 1958 का, was ik nog niet in geboren mensen, maar het is een ontzettend mooie liedje van Padmashri Mohammed Rafi aur Asha ji ka hai. Isme Madhu Bala Bharat Bhushan is film mein kaam kiya hai. आओ मिलकर सुना जाए फॉर गीता जी।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

का हैप्पी स्टेशन 500 रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होतों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होत है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होत तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात करते, कोई बात नहीं, होत तो होत होते हैं। तेरे होठों के फूल जो है प्यारी प्यारी।

मेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूँगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे जोन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

होठों में ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ तेरे होठों के फूल। आप सुन रहे हैं आप ही का हैप्पी सीजन 5 रेडियो राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मज़ा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

तेरे होठों के फूल होठों पे बस तेरे ही नाम है। जिस तरह से एक सोट एक हेम्थ का कनोप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरे ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

प्यार में, तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले, एक गीत सुना। तेरे होठों के फूल

जबडो होते हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज़ आते हैं, एक दूसरा आवाज़ भी अंदर से आते हैं दोस्तों। अब की बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरे होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल आप सुन रहे हैं। अगर आपका ख्वाहिश है हो चुमने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

क्या ख्वाहिश है हर पल मेरे होठों पर, हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है?

ये होठों को तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

न करो तू आईना, कहीं खुद का नजर न लग जाए, वो भी हो सकता है। सरा संभाल के ये प्यार मोहब्बत की कहानी आप अभी सुन रहे थे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।

आपकी का हैप्पी स्टेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, कांटेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 7 5 2 8 4 0 या 9 7 3 7 2 0 0 पर आप तार कीजिए। तारकर में मैं दोहराता हूँ, अपन अखेंडा में लिख कर रख लीजिए, आज नहीं तो कल के लिए 0 7 5 2 8 4 0 या 0 7 3 7 2 0 0 तारकर नंबर है। शान दोस्तों, शान एक गायक है, लेकिन शान को एक बैंड का एक ग्रुप अभी है, एक म्यूजिक ग्रुप है दोस्तों, और उसी म्यूजिक ग्रुप के आवाज़ में आप म्यूजिक सुनेंगे और शान के गला से आप ये गीत को सुनेंगे।

शान, मिस्टर शान की मीठी आवाज में अभी आपने सॉन्ग को सुना, फावन हिंदुस्तानी दुबाब चुन है दोस्तों, उदित नारायण। उदित नारायण आपको फरमाएंगे कि हवाओं ने ये कहा, और जैसे आप सभी को मालूम है कि हवा भी आवाज़ देता है दोस्तों, लेकिन कहता है हवा वो मुझे मालूम नहीं है। आशा रखता हूँ कि आपको ये गीत सुनकर पता लग जाएगा कि हवा कहता है और हवा ने क्या कहा, आपको खुद मालूम हो जाएगा। आप खुद सुनिए दिल और जान से।

उदित नारायण, पद्मश्री, उदित नारायण के मीठे आवाज में भी आप ये गीत को सुना। दोस्तों, जानू मेरी जान, तू मेरा मैं तेरे, या तू मेरी मैं तेरा, जाने सारा हॉलांद। दोस्तों, ये फिल्म शान का सॉन्ग है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन काम किया है परवीन बाबी के साथ। आप सभी को मालूम है कि दोनों में प्यार मोहब्बत था, फिर भी परवीन बाबी जो है वो डिप्रेसिव हो गया था, और जब डिप्रेसिव हुआ तब कई लोग के बारे में अनबन कहा, और कहा कि भारत की सरकार जो है उन्हें भी फॉर द रेक्टर एग्जाम किया था, उसका मूड खराब हो गया था। सो लेकिन उसी समय पे एक पार्टी पे परवीन बाबी ने गया, और अमिताभ बच्चन उसी समय पर सुपरस्टार चुना गया। तो परवीन बाबी से सवाल किया गया कि आप क्या ये बात से सही है कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार चुना गया? तो परवीन बाबी ने कहा, अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार का पद अगर देना है तो धर्मेंद्र को दीजिए, देवानंद को दीजिए, ऋषि कपूर वगैरह का नाम लिया तो उसके तीखा ना अमदद प्यार मोहब्बत अब नहीं था, और डिप्रेसिव हो गया था। ठीक से देखा जाए तो उसको आप भी नाराजी नहीं मान सकते, इस बात पर कोआलक नहीं ले सकते हैं, वो नहीं जानते थे वो क्या कहते। फिर भी जो इसके दिल में आया वो कहा, जानू मेरी जान। ये दोनों लॉफर्स दोस्तों, परवीन बाबू बाबी और साथ ही साथ अमिताभ, दोनों का फिल्म शान का सॉन्ग।

प्रेमी अमिताभ बच्चन परवीन बाबी का फिल्म शान का सॉन्ग अभी आपने प्रोग्राम में सुना। उदित नारायण एक बार फिर प्रोग्राम में, लेकिन उदित नारायण के साथ रहेगा विनोद राठौर और साथ ही साथ अलका याग्निक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक पर। और ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा है। दोस्तों आप जानते हैं एक गीत जब तैयार होता है तो गीत का लिखार कोई होता है, जो लिखता है गीत को स्क्राइफर वो भी एक कलाकार है, लेकिन लोग उसका नाम नहीं लेते हैं। जब एक गीत नहीं लिखा जाता तो उदित नारायण अलका वगैरह वगैरह लोग गीत कैसे गाते, तो एक स्क्राइफर का तालीफ भी किया जाहिर किए करने को, इसलिए कि एक स्क्राइफर जो है वो बैठ कर दिन रात सोचते हैं क्या लिखूँ और जाकर गीत बनाते हैं। और एक गायक गीत को गा लेता है, बढ़िया आवाज़ है तो गा लेता है। फिर भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है तेरे बिना दिल।

मेरे बिन दिल लगता नहीं मेरी जान, वाह वाह क्या बात है दोस्तों। अगर दिल लगाना है तो एक जगह पर दिल लगा लीजिए, दो जगह दिल लगाएंगे तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। आदमी है जो चार जगह दिल लगाता है वो भी होता है, हो सकता है भी। दोस्तों राजकुमार एक एक्टर था, जब वो कुछ कहते थे तो लोग ध्यान से सुनते थे कि अब क्या बोली। तो फिल्म मॉडल इंडिया जब बना बहुत पॉपुलर हो गया राजकुमार, उसके बाद चारों बगल से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट आने लगा। तो एक रात एक शाम के बात है, जब वो अपने दोस्त प्रकाश अरोरा और उनके पत्नी के साथ इवनिंग ड्राइव पर निकले थे। इस दौरान वो एक पाम स्टोर पे रुके, उसी समय वहाँ कुछ लोग आए, और जब वहाँ पर लोग आए तो राजकुमार को परेशान करने लगे। कुछ देर तो राजकुमार बर्दाश्त करते करते रह गए, फिर भी जब बात उन्हें सहन शक्ति से भर गए तो उन्हीं ने बात या पलट कर जवाब देने लगा। आप जानते हैं राजकुमार का मुंह जो है वैसे तो सबसे मोच कफाला, तो वो जवाब देने लगा, फिर लड़ाई हुई। लड़ाई का शुरुआत हो गया दोस्तों, और एक शख्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दुख के बात है दोस्तों, लड़ाई के समय और किसी ने नहीं देखा कि वो शख्स जो मर गया उन्हें किसी ने मारा, राजकुमार ने मारा या उसके दोस्तों ने, लेकिन वो शख्स दुनिया को छोड़ चल गए। और एक साल तक मामला चलता रहा, राजकुमार का प्रॉब्लम था एक साल तक और काम नहीं कर सकता था। फिर भी ये बात जज के सामने पेश किया गया और राजकुमार को फ्री हो गया। राजकुमार को कहा गया कि आपने एक काम नहीं किया, फ्री हो गया। मैं नहीं जानता राजकुमार किया या नहीं किया, फर्दाख्त था। और आप जानते हैं फिर भी उन दिनों के बात है या इन दिनों के बात है, जो लोग पॉपुलर होते थे तो उन्हें बहुत कम सज़ा भी मिलते थे। तो उसके बाद राजकुमार को यहाँ से फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के शुरुआत हो गया। आप जानते हैं 3 जुलाई 1969 तक के बात है, जब राजकुमार का मृत्यु हो गया था मुंबई में। तो फिल्म हमराज का सॉन्ग है, राजकुमार और सिमी दोनों के आवाज दोनों फिल्म में काम किया, और ये गीत महेंद्र कपूर, पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में

नीले गगन के तले धरती पर पाँव पड़े राजकुमार के बारे में मैंने कहा भी दोस्तों, और अब की बार एक सॉन्ग मैं तैयार करके रखा हूँ, फिल्म चलते चलते का सॉन्ग है, अभिजीत एंड अलका दोनों के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी का फिल्म चलते चलते का सॉन्ग।

तौबा ये नसारे, तौबा नसार के बाद लाखों है यहाँ दिलवाले, फिर प्यार नहीं मिलता। कैसा बात है दोस्तों, लाखों है दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता। हाथ में फूल ले लो, देखो कैसे प्यार मिल जाएगा। फिल्म किस्मत का सॉन्ग है, विश्वजीत बबीता फिल्म में काम किया दोस्तों। विश्वजीत, विश्वजीत एक न सिर्फ एक एक्टर था, लेकिन अभी तो जियत है, मैंने कहा उनका एक्ट के समय पर, उन्हें सिर्फ एक एक्टर था लेकिन एक प्लेबैक सिंगर था दोस्तों। कई गाना वो गाए है, हॉलैंड देश में शो दिया है, सूरीनाम में भी शो दिया है। तो विश्वजीत का फिल्म किस्मत का सॉन्ग है, जो निकटिंग आतन शास्त्र में फिल्म जो रिलीज हुआ, और महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप सुनेंगे, लाखों है यहाँ दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता।

डुएट डुएट सॉन्ग का बात जब हुआ दोस्तों, तो कुमार सानू आलका के साथ सबसे ज़्यादा डुएट पेश किया है या गाए है, और सभी डुएट में से एक डुएट है आज पहली बार दिल के बात की है। एल्बम तड़ी पार का सॉन्ग है और हम सब मिलके सुनेंगे फिल्म तड़ी पार का सॉन्ग आज दिल के बात। आज पहली बार दिल के बात की है।

ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। हर एक काम जो आपके रेडियो के सिरे का आना है कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से, या चले आइए दफ्तर पर, खुला रहता है दोस्तों रोजाना। और आपको मानना चाहिए खास फरमाए जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह आपके पास है तो आप शौक से चले आए फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो के पास। पिया तू अब तो आ जा, आशा भोसले एरदीप बर्मन का म्यूजिक है। और जब ऐसा गीत है दोस्तों पिया तू अब तो आ जा, तो कौन हो सकता है जो ये गीत को एक्ट किया होगा? हेलन के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। हेलन, जितेंद्रा, आशा परेख, ये सब ही काम किया। फिल्म कारवा निहरी इन सीफन तक का फिल्म है। इसी फिल्म का सॉन्ग आशा भोसले के आवाज़ में आप सुनेंगे।

आजा पिया अब तो आजा, उसके बाद आजा पिया तुम्हें प्यार दो। बहारों का सप्ते फिल्म का नाम है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है दोस्तों। और ये फिल्म में आशा परेख और राजेश खन्ना दोनों इस फिल्म में काम किया। तो आशा परेख राजेश खन्ना बड़े बड़े फिल्मों में काम किया, जैसे बहारों के सपने, कटी पतंग, आन मिलो सजना वगैरह वगैरह, नाइटिंगेल, लता दीदी एंड एडी बर्मन के म्यूजिक पर।

1969 के बाद आपको मालूम है दोस्तों, एक फिल्म था जिसमें धर्मेंद्र काम किया आशा परेख के साथ, फिल्म आया सावन झूम के। वाह क्या फिल्म था दोस्तों, बड़ा सानी भी इस फिल्म में काम किया और एक सॉन्ग है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी एंड नाइटिंगेल लता दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे आया सावन झूमके का टाइटल सॉन्ग। धर्मेंद्रा और आशा परेख दोस्तों ये दोनों भी बड़े बड़े फिल्मों में काम किए, जैसे आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और बड़े बड़े फिल्मों में ये दोनों काम किया दोस्तों। आपको मालूम है उन दिनों में निखिल शास्त्र के बात है जब धर्मेंद्र एक टॉप एक्टर था और आशा जी भी कुछ पीछे नहीं था, वो भी एक टॉप एक्ट्रेस था। तो दोनों का फिल्म आया सावन झूमका जो मैंने चॉइस करके रखा उस फिल्म का सॉन्ग अभी आप सुनेंगे राफी साहब एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों के मीठी आवाज़ों में।

आया साउंड झूम के बाद दोस्तों, अब की बार उन दिनों के बाद है कपूर परिवार का सबसे हैंडसम बॉय शशि कपूर का फिल्म आमने सामने का एक सॉन्ग है, नैन मिला के चैन चुराना किसका है ये काम। शशि कपूर इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ काम किया दोस्तों, और शशि भी शर्मिला के साथ और कई फिल्म बनाया, बड़े बड़े फिल्म जैसे सुहाना सफ़र, माई लव, अनारी वगैरह वगैरह। तो हम सब मिलकर सुनेंगे नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है वो काम, मुझको पता है उस जालिम का नाम।

या आपको भी पता है उस आलिम का नाम, मैं सोचा जरूर पता होगा। दोस्तों, मस्त बहारों का मैं आशिक फिल्म फर्ज, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे। उन दिनों में ये फिल्म कितना हलचल मचाया और जितेंद्रा फिल्म में काम किया बबीता के साथ। दोस्तों, बीते हुए दिनों में एक बात थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म एक्टर्स जब शुरुआत करते थे तब फिल्म फ्लॉप हो जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर का फिल्म फ्लॉप हो जाते थे, उसके बाद टॉप एक्टर बन जाते थे। उसी तरह से एक एक्टर भी जितेंद्रा है या था, जो जिनका एक दो फिल्म फ्लॉप हुआ फिर जाकर एक टॉप एक्टर बना। तो माइटी मुकेश नहीं है, मैंने सोचा माइटी मुकेश नहीं, राफी साहेब वंस अगेन, मस्त बहारों का मैं आशिक, जितेंद्रा एंड बबीता का फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग।

ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। आप सुने प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। बहारों ने किए सजदे, बहारों ने किए सजदे, फूलों ने सर झुकाया है। माइटी मुकेश के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे। बॉम्बे बाय नाइट फिल्म का नाम है।

ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, बदले दुनिया सारी, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। दोस्तों फिल्म गाइड, इस फिल्म में देवानंद एक गाइड था, हिट्स था, रेस हिट्स, और एक सॉन्ग है जिसने शैलेंद्रा ने लिखा है। शैलेंद्रा का असली नाम है शंकर दास केसरी लाल होना चाहिए, शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्रा का असली नाम है। आप जानते हैं दोस्तों, एक गाना जब एक गीत जब बनता है तो लोग गाते हैं, हम हमेशा कहते हैं राफी ने अच्छा से गाया, मुकेश अच्छा से गाया, लता ने अच्छा से गाया, किशोर कुमार ने गीत अच्छा से गाया, लिखी वो शख्स जो एक गीत लिखता है उसका नाम हम नहीं लेते हैं। वो आदमी जो बैठ कर सोच सोच के दिन रात एक गीत लिखते उन्हें हम भूल जाते हैं, ऐसा मत होना चाहिए। शैलेंद्रा का लिखा हुआ गीत है, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, किशोरदा एंड लता।

मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। जैसे मैंने कहा दोस्तों, बहुत से एक्टर्स का फिल्म फ्लॉप हुआ है और सलमान खान का भी 2-3 फिल्म लगातार फ्लॉप हुआ। तो एक रात्रि में लगभग आधे रात को सलमान खान गोविंदा को तार किया। उन दिन गोविंदा उनका दोस्त है, तो उनसे कहा कि मैं अब स्टॉप करूँगा, फिल्म फ्लॉप हो जाता अच्छा नहीं लगता है। तो गोविंदा सलमान खान का हाथ पकड़ा, उन्हें मदद किया दोस्तों। तो सलमान खान आज इतना बड़का एक्टर है। सलमान खान का एक फिल्म है लकी, और उसी फिल्म का एक सॉन्ग है सोनू अतनान सानी, दोनों की आवाज़ में सुन जरा।

सुन जरा सुनिए सुन जरा, इसी फिल्म का एक दूसरा सॉन्ग मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ, लॉकी नो टाइम फॉर लव, फिल्म का नाम अनुराधा एंड उदित नारायण।

वाह क्या लव सॉन्ग, जा मेरी जा रही है सनम। एक दूसरा लव सॉन्ग है दोस्तों, शाहरुख खान एंड यूही चावला ने काम किया फिल्म यस बॉस, 90s रोमांटिक सॉन्ग है और ये गीत मैं कोई ऐसा गीत गाओ आप सभी के लिए है।

तो आज हम आप लोग को दो टॉप सिंगर्स का प्रोग्राम हम सुनाएंगे और वो है यानी कि द टॉप सिंगर्स फ्रॉम इंडिया द टाइगर ऑफ द इंडिया कुमार शानू का गीत और एक बगल है अलका याग्निक का गीत। तो इस कुमार शानू के साथ अलका याग्निक के गीत हम चलाएंगे और फिर से उसके बाद हम चलाएंगे और वो है मोहम्मद अजीज का लवली हिट सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे। तो पहले हम चलते हैं मोहम्मद

और दोस्तों, जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आप कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनिक का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तलाश है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।